एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:54 हुए हैं। हमारे प्रसारण की यह सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे चैनल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे ही 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के अंदर से रिले करेंगे। 9:10 आप सुनेंगे रामचरितमानस कान। 9:20 पर भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना की सुन सकेंगे आप। और झलकी आज की ताजा खबर, ये आप कार्यक्रम सुनेंगे 9:40 पर। दस बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के। 10:30 आप सुनेंगे गाने नए तराने। 11:00 से लेकर 1:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। दोपहर 1:00 होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। 7:30 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 4:30, 5:00 युवाणी कार्यक्रम, बालवाड़ी का समय रहेगा 5:30। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:05 पर। माटी के स्वर कार्यक्रम 6:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती आप सुनेंगे 7:00। फिल्म संगीत 7:30। 8:00 हेलो कोरबंद। 9:00 सुगम संगीत। और 9:15 से लेकर 10:00 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। 10:00 आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। 10:00 थे हमारे चैनल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बज रहे हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के अंदर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुरक्षा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार गोडावण संरक्षण के लिए प्रयासरत। और जापान में चल रहे एशियन 26 के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में कानूनी सहायता और बाल संरक्षण तंत्र को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री मेघवाल कल हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय ऑनलाइन यौन शोषण की रोकथाम और बाल हितैषी न्याय को मजबूत करना था। श्री मेघवाल ने युवाओं के सामने बढ़ते डिजिटल खतरों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें ऑनलाइन ग्रूमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक और प्रौद्योगिकी आधारित शोषण शामिल है।
1: हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। बच्चों के इसी संदर्भ में आर्टिकल 39E और 39F भी उनके संरक्षण, गरिमा तथा विशेष उपायों का संवैधानिक आधार देते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह सुरक्षा केवल कानून की पुस्तक में नहीं, बच्चे के दैनिक जीवन में भी दिखाई दे। आज की थीम के परिप्रेक्ष्य में न्याय की यह यात्रा केवल जजमेंट पर समाप्त नहीं होती, फैसले के आगे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को काउंसलिंग, आवश्यक हेल्थ केयर, शिक्षा की निरंतरता, विक्टिम कंपनसेशन और सुरक्षित रिहैबिलिटेशन से भी जोड़ा जाए।
0: साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने बाल संरक्षण के लिए न्याय की सुगमता के 3 आयाम प्रस्तुत किए। इनमें समझने में सुगमता, सहभागिता में सुगमता और कार्य करने में सुगमता शामिल है। श्री मेघवाल ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा की कानूनी सेवा इकाइयों, टेली लॉ और न्याय बंधु जैसी पहलों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को सरल बनाने पर जोर दिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार

0: संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 8 अक्टूबर को इसकी लोक सूचना जारी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर, दूसरे का 29 अक्टूबर, तीसरे का 4 नवंबर और चौथे चरण के वोट 14 नवंबर को डाले जाएंगे। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मतपत्रों से होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जैसलमेर और फलौदी में वोट डाले जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख से अधिक वोटर होने के कारण चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायत चुनाव के लिए कुल 4,03,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनाव के जरिए 1,55,000 जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये चुनाव 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में होंगे। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारने और उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए पाली में आज उद्यमियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य भर के 1,200 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और ऋण सहायता सहित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान चूड़ी बनाने, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और कुल्हड़ बनाने जैसे विभिन्न उद्योगों की जानकारी दी जाएगी। इससे विभिन्न जिलों के उद्योगों के बीच कारोबारी नेटवर्क मजबूत होगा। नए बाजार के विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से चल रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में मेजबान भारत के साथ साथ 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों की वायुसेनाएं अपने अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य कर्मियों के साथ सीधे हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह संयुक्त फॉर्मेशन विभिन्न देशों के बीच आपसी विश्वास, सटीकता, रक्षा और भाईचारे का संदेश है। इस आयोजन का मुख्य संदेश पावर इन पार्टनरशिप यानी साझेदारी में ही शक्ति है। ये युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की दिशा में एक और पहल करते हुए कल जैसलमेर के रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि गोडावण सहित प्रदेश की अनमोल वन्य जीव विरासत सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रूप में पहुंच सकें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में गोडावण संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति आज वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन चुकी है। गोडावण संरक्षण कार्यक्रम की सफलता राज्य सरकार, वैज्ञानिकों, वन विभाग तथा स्थानीय समुदायों की सार्थक कोशिश का नतीजा है। वन तथा पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पक्षी गृह में गोडावणों का प्राकृतिक माहौल में संरक्षण किया जाएगा।
1: अब तक गोडाउन का संरक्षण क्लोज्ड ब्रीडिंग सेंटर में किया जा रहा था। अब इस एवियरी के जरिए उन्हें धीरे धीरे जंगल में वापस बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राकृतिक परिवेश में छोड़ने के बाद गोडाउनों की गतिविधियों, आवास के इस्तेमाल, व्यवहार और जीवित रहने की क्षमता पर वैज्ञानिक निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सेटेलाइट टैग और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। गोडाउन को केवल एक दुर्लभ पक्षी ही नहीं बल्कि थार के ग्रासलैंड इकोसिस्टम का प्रमुख संकेतक भी माना जाता है। मनीषिया, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिन पशु कल्याण मानकों में सुधार करने तथा विलुप्त हो रहे प्राणियों की रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें रखी गई है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा तथा अमानवीय व्यवहार को सामाजिक चेतना विकसित करना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समारोह नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू धांडा होंगी। वह तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इन खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस बीच इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रणवी उर्स को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। प्रणवी इस लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी हैं। इसके अलावा लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। ये पुरस्कार इस इवेंट में भारत का पहला मेडल जीतने में तीनों की सामूहिक उपलब्धि को सम्मान देने के लिए है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IGPL की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री और जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का समापन आज। भारत कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरित मानस का।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति 4 दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम के चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगी।

अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमिचल से बोल रहे हैं। आज सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: चिरमी चैनल के संग आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत वंदना और आप सुन रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।
1: इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जल की आज की ताजा खबर।
1: कुदरत भी कैसे कैसे चमत्कार करती है। अब इसी घटना को लीजिए। शहर की इस मुख्य सड़क के एक कोने पर अब्दुल रोज शाम को अंडों का ठेला लगाता है। देर रात तक अंडों के ऑमलेट बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका चलाता है। इस काम में उसका छोटा बेटा शकूर भी उसकी मदद करता है। आज शाम को अब्दुल अपने बेटे शकूर को दुकान खोलने का कहकर किसी काम से बाजार चला गया। शकूर ने जो ही ठेला जमाया, अंडों को संभाला, तो अचानक एक अंडे को फोड़कर उसमें से चूजा बाहर निकल आया। बस देखते ही देखते जंगल की आग की तरह ये बात चारों ओर फैल गई। जिसने सुना वो इस चमत्कार को देखने दौड़ पड़ा। आइए हम भी वहीं चलते हैं।
2: अरे देखो देखो,
3: क्या है?
2: जिंदा है ये देखो। अरे उसने आंखें टिमटिमाई।
3: हाँ हाँ, अरे यार झटका तो मत दो यार। हाँ। अरे मुझे भी तो देखने दो यार।
4: अबे छोकरे कहीं और से तो नहीं उठा लाया इसे? बाद में पता चले कि हम यही बावड़े हो रहे थे।
5: अरे भैया जी हट जाओ। हाँ। अंकल दूर हटो। अरे मेरा सामान नीचे गिर जाएगा, आप लोग दूर क्यों नहीं हटते?
4: अबे हटो ना।
2: अरे ये बता, ये कैसे पैदा हुआ?
3: कब हुआ यार, ये कैसे हुआ? अरे कुछ समझ भी नहीं आ रहा।
4: तूने खुद अपनी आंखों से देखा था क्या इसे?
5: अरे हाँ, ये अंडे में से निकला।
2: अच्छा?
5: मैंने खुद देखा था। अरे आप सब लोग दूर हट जाओ, भाई आप लोगों ने तो मुझे भेज ही दिया है।
6: चलो भाई चलो, यहाँ से आओ।
4: अंडे में से
5: कितना प्यारा लग रहा है ये, मैं अब्बा से इसे मांग लूंगा। क्यों भाई कुकड़ुक्कू, रहोगे मेरे साथ? करोगे मुझसे दोस्त? करोगे मुझसे दोस्ती?
1: शकूर के बाल सुलभ मन को उस मुर्गे से मोह हो गया। वैसे तो बात आई गई हो जाती, पर शहर में 24 घंटे सतर्क है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पत्रकारों की। ऐसी कड़ी प्रतिस्पर्धा के समय में इस चटपटी चमत्कार पूर्ण खबर को छापने से भला कौन सा अखबार चूकेगा? तो बात की बात में शहर के तमाम समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, मैं फोटोग्राफर अब्दुल के ठेले पर आ पहुंचे।
4: हाँ श्याम जी, आप जल्दी से फोटो लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं आ ही रहा हूँ। क्या नाम बताया आपने?
7: जी मेरा नाम अब्दुल है।
4: ओहो, आपका नहीं, उस बच्चे का जिसने अपनी आंखों से ये घटना देखी है।
7: जी ये खिलवा शकूर।
4: कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
7: अब साहब चौथी पढ़ के स्कूल छोड़ दी इसने, तो अब घरे पर मेरे साथ ही काम कर रहा है।
8: अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है?
7: अब साहब ये तो फॉरम के अंडे है, मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। साहब मुझे तो लगता है ये कैसे उठा कर ले आया। अरे बताना कहाँ से लाए रे?
9: अरे अरे अब्दुल भाई, बच्चे को मत डांटो है। मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो सकता चमत्कार? क्या चमत्कार नहीं होते? और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते।
10: जल्दी से न्यूज कवर कर लो और फोटो यहाँ से। अगर प्रूव हो गया ये मुर्गा कहीं और से लाया गया तो अपनी न्यूज क्या बनेगी? खक
11: तो सही है यार, ऐसी खबरें कितनी मुश्किल से मिलती है। सोच रहा हूँ क्यों ना पूरी की पूरी कवर स्टोरी तैयार कर दूं इस पर। चलो कुछ फोटो लेते हैं।
2: ठीक है।
7: हाँ बेटा शकूर, जरा हाथ में लेना इसे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, रेडी, शाबाश। हाँ हाँ एक और अब्दुल भाई। हाँ। आप भी आ जाइए।
1: तो इस तरह लोकतंत्र के सजग प्रहरियों ने नुक्कड़ की इस खबर को शहर की खबर बना दिया। कई काले सफेद और रंगीन चित्रों में सजकर शकूर, अब्दुल और वो चूजा शहर के तमाम अखबारों में छा गए। एक वानगी देखिए, कुदरत का करिश्मा, ठेले के अंडे से जन्मा मुर्गा, विज्ञान को चुनौती बना शकूर का चूजा। सावधान, कहीं आपके फ्रिज में पड़े अंडे से मुर्गा तो नहीं निकल रहा। अटपटी टाइटल्स और चटपटी शब्दावली से लवरेज खबरों ने पूरे शहर का रुख अब्दुल के ठेले की ओर कर दिया। वैसे किसी भी ठेले पर भीड़ का बढ़ना ठेले वाले के लिए अच्छा होता है। ये ग्राहकों की भीड़ नहीं थी, ये तो उन लोगों की भीड़ थी जो सोच रहे थे कि काश एक आध अंडे से मुर्गा और निकल आए तथा वे भी उस ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने का गर्व हासिल कर सकें। एक मिनट, ये गाड़ियों से कौन लोग उतर रहे हैं? चलो वहीं चलकर देखते हैं।

0: हटिए जरा।
1: आप में से शकूर कौन है
2: जी? ये रिया।
1: वेल देखिए, हम लोग चैनल कल तक से हैं। हम आपका और शकूर का इंटरव्यू करना चाहते हैं।
2: देखो जी मैडम, वो मुर्गे वाली बात अपने भेजे से बाहर है। मैं तो खुद
1: वेट अ मिनट। रोमी, आर यू रेडी?
3: या, कैमरा इज रेडी मैडम, स्टार्ट।
1: ये है वो ठेला जिस पर कुदरत का अजीब करिश्मा हुआ। कल शाम यहाँ रखे एक अंडे से चूजा बाहर निकल आया। वैसे चूजा अंडे से ही निकलता है, पर गौरतलब बात ये है कि वो अंडा नॉन फर्टाइल एग, यानी कि ऐसा अंडा था जिससे आगे किसी मुर्गे के जन्म की कोई संभावना नहीं होती। आइए मिलते हैं ठेले के मालिक अब्दुल भाई से। अब्दुल भाई, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये घटना कब, कहां और कैसे हुई?
2: जी मैडम, वो कल शाम को ही हुई है। मैं तो बाजार गया था, ठेले पर मेरा लड़का।
1: यानी कि आपने अपनी आंखों से मुर्गे को अंडा फोड़कर बाहर निकलते हुए नहीं देखा?
2: जी उस टाइम तो ठेले पर मेरा बेटा सकुरिया ही था।
1: और अब इंतजार खत्म हुआ। हम मिलते हैं दुनिया के मोस्ट लकी बॉय से, जिसने खुद अपनी आंखों से ये घटना देखी है। वेलकम शकूर। शकूर, लगता है शकूर किसी जरूरी काम से कहीं चले गए हैं, पर कहीं जाइएगा नहीं, वी आर कमिंग इन अ शॉर्ट वाइल। अब्दुल भाई के ठेले से चैनल कल तक के लिए कैमरामैन रोमी के साथ मैं आरती सक्सेना। क्या अब्दुल भाई, ये एन वक्त पर शकूर कहाँ निकल गया? आपको पता है ना ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है।
4: नमस्कार, इस बहुचर्चित घटना का खुलासा करने के लिए फ्री टीवी ने एक एक्सक्लूसिव मुलाकात की है नन्हे शकूर से। शकूर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो घटना हुई।
5: वो अंडा फूट गया और उसमें से एक छोटा सा चूजा बाहर आ गया।
4: लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि सारे के सारे अंडे फॉर्म के थे, तो उसमें से चूजा पैदा कैसे हुआ?
5: वो तो मुझे पता नहीं।
4: अच्छा ये बताइए कि आप कितने समय से ये ठेला लगा रहे हैं?
5: वैसे ठेला तो अब्बा लगाते हैं, मैं तो यूं ही कभी कभी आ जाता हूँ।
4: और सप्ताह में कितने दिन आप ठेले पर काम करते हैं?
5: चार दिन काम करता हूँ मैं।
4: क्या आप फ्री टीवी के दर्शकों को बताएंगे कि वो चमत्कारी मुर्गा अब कैसा है?
5: पर वो तो वहाँ ठेले पर है।
4: तो आइए चलते हैं शकूर के ठेले पर और देखते हैं उस कुदरत के करिश्मे को। जाइएगा नहीं, थोड़ी ही देर में हम वापस आ रहे हैं। फ्री टीवी के लिए कैमरामैन मनिंदर कॉल के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय।

0: हिमांशु यार कमाल कर देता। यार ए बता, छोकरे लोग पढ़ना कहाँ से?
1: अरे यार सब करना पड़ता है, चैनल की टीआरपी गिरती जा रही है और उधर वो प्रोड्यूसर सर पर चढ़ा बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ कि 150 खर्च भी हो जाए तो कोई गम नहीं, बस ऐसी ब्लास्टिंग न्यूज मिलती रहना चाहिए।
0: की गल है यार।
2: और इस तरह नुक्कड़ की एक खबर शहर की चार दीवारी को लांघते हुए पूरे देश की खबर बन गई। दिन रात 24 घंटे एक ही प्रोग्राम, शकूर का चूजा। इस घटना की बारीकी जानने के लिए कई तरह के एक्सपर्ट्स को स्टूडियो में बुलाया गया। इनमें बायोलॉजिस्ट, पोल्ट्री फार्म के निदेशक, पक्षी प्रजनन विशेषज्ञों के अलावा चाइल्ड लेबर्स के लिए काम कर रहे एनजीओ तथा इस घटना पर धार्मिक टिप्पणी करने के लिए साधुनुमा पर्सनालिटीज भी शामिल थी।
3: मामुनि जी आए हैं,
4: नई चेतना लाए हैं।
3: मामुनि जी आए हैं,
4: नई चेतना लाए हैं।
5: शांत हो जाइए भाइयों और बहनों, शांत हो जाइए। परम पूज्य महामुनि जी पधार चुके हैं।
2: धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मुझे बताया गया है, इस शहर में भी एक चमत्कार हुआ है। अकल्पनीय ढंग से एक प्राणी अवतरित हुआ है। कुछ महाजनों ने एक मंदिर बनाकर उसमें उस दैव शक्ति की पूजा अर्चना करने का प्रस्ताव रखा है। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पुनीत कार्य में तन मन धन से सहयोग करें। अंत में मैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कल्याण मस्तु।
5: परम पूज्य महामुनि जी के आशीर्वाद से ये कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। उस ईश्वर स्वरूप चमत्कारी मुर्गे की सेवा करना हमारा अधिकार है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से प्रार्थना की है। यदि उन्होंने हमारी प्रार्थना को ठुकराया तो हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, शहर में रैली निकालेंगे, धार्मिक उत्थान के लिए सभाएं आयोजित करेंगे।
0: तो देखा आपने, शकूर का चूजा पूजनीय हो गया।
2: तथा कथित धर्म प्रेमी उस मुर्गे को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, पर यह इतना आसान नहीं था। संप्रदायवाद के अंगारों को हवा मिलने की देर थी। जैसे ही दैव स्वरूप मुर्गे को प्राप्त करने के लिए लोगों का समूह वहां पहुंचा, वैसे ही विरोधी हाथ खड़े हो गए।
6: देखिए देखिए साहिबान, हम कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते। बड़ा मेहरबानी, आप लोग यहाँ से चले जाइए, इसी में आप सबकी भलाई है।
7: ये बखेड़ा हम नहीं आप कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कार है, इसकी पूजा करना हमारा अधिकार है। अजी मुर्गे को हम लेकर जाएंगे।
6: बड़े आए मुर्गे को लेने वाले। अरे भागो यहाँ से।
7: अरे कौन होते हो हमें रोकने वाले? अरे हटो यहाँ से यार,
6: ये लोग ऐसे नहीं।
2: मारपीट हुई, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस आई, धरपकड़ हुई। अखबार, रेडियो, टीवी चैनल सभी इस दंगे फसाद को बड़ी तीव्रता से प्रसारित कर रहे थे। पर अफसोस, इस चक्कर में कई दिनों के लिए अब्दुल का ठेला बंद हो गया। रोज कमाकर रोज खाने वाले व्यक्ति के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया होगा, इसकी फिक्र किसी को नहीं थी। दुनिया पर नहीं फूटने वाला गुस्सा आखिरकार मासूम बच्चे शकूर पर फूटा।
8: साले तू ये इस झगड़े की जड़, ना तू उस मुर्गे को पैदा होते देखता और ना ही आज हम भूखे मर रहे होते। अरे लाल है, 7 दिनों से ठेला बंद पड़िया है, तुझे पता है?
9: अब्बा मैंने कुछ
8: नहीं किया। ये भी जाएगा अम्मी के पास, सब तेरी गलती से। आज मैं ये टंटा खत्म कर ही देता हूँ।
9: टुकड़ू का मत ले जाओ
8: अब्बा, रुकने वाला नहीं हूँ। मेरा चेहरा
2: गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अब्दुल उस चमत्कारी मुर्गे को लेकर घर से निकल गया। वो कहाँ गया? उसने उस मुर्गे का क्या किया?

ये सब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर बनेगी ये खबर, उसमें से निकलेगी दूसरी खबर, दूसरी से तीसरी, और इसी तरह बनती चली जाएगी आज की ताजा खबर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झलकी, आज की ताजा खबर। हम आकाश में नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं, आज सुनते हैं ये गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। FM 103.7 MHz पर सुबह के 10 बजे आए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, संगीत जतिन ललित का और मजरू की शब्द रचना।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और सदना सरगम की आवाज में ये गीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आए सुनते हैं गाने नए तराने।

चिरमी चैनल के संग आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पलक मुच्छल की आवाज में फिल्म काबिल का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही गाने नए तराने नए कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचलों से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 11 बजे आए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: विविध भारती,
2: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रम।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: जवाहरात लेकर के आता है अपने श्रोताओं के लिए।
7: आज ऐसी ही स्मृतियां हम आपसे बांटने आए हैं
6: जी। मनीषा जी, इस हफ्ते 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस, सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविन्द्र जैन।
1: रविन्द्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जीएल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविन्द्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविन्द्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविन्द्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के एक करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और ये गाना आज तक रिलीज नहीं हुआ।
0: हाँ। और रविंद्र जैन ने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि कई अहिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया।
1: जी, ये अहिंदी फिल्में थी, मलयाली फिल्में, हरियाणवी, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती, बांग्ला, तेलुगु, उड़िया और राजस्थानी फिल्में।
0: जयंत जी, रविन्द्र जैन साहब का राजश्री प्रोडक्शंस के साथ गहरा नाता रहा और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तली फिल्म जो बनी 1973 में सौदागर, वहां से रविन्द्र जैन साहब का संगीत स्टैब्लिश होता है हिंदी सिनेमा में और उसके बाद सारी सुपरहिट फिल्में जैसे गीत गाता चल, चित चोर, अखियों के झरोखों से, नदिया के पार,
1: 2006 में फिल्म विवाह तक।
0: जी हाँ, एक लंबा समय रविन्द्र जैन जी ने संगीत को दिया राष्ट्रीय बैनर्स के तले। और रविंद्र जैन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि दक्षिण भारत के महान गायक येसुदास को उन्होंने हिंदी फिल्मी संगीत में इंट्रोड्यूस किया और उनके बहुत ही मीठे गीत रविंद्र जैन जी के स्वरबद्ध किए हुए हैं। इसके अलावा हेमलता, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह जैसे कलाकारों को भी उन्होंने हिंदी फिल्मी गीतों में मौका दिया और आज उन सभी के गीतों से हिंदी सिने जगत समृद्ध है।
1: येसुदास की आपने बात की मनीषा जी और रविंद्र जैन साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जो येसुदास और हेमलता ने गाया है फिल्म चितचोर के लिए, तो पहले वो सुन लेते हैं और फिर जो रिकॉर्डिंग अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं उसे सुनवाएं।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविन्द्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविन्द्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे जिन्होंने हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, उनका नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सूझी?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं उनमें यूं था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा, और कुछ यूं भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी।
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बन गया हूँ।
2: रविंद्र जी, आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि आपके गानों में हर दो तीन चार फिल्मों के बाद जो एक फिल्म आती है
1: जी,
2: तो उसका कोई ना कोई एक गीत का विषय या राधा होती है, मीरा होती है। जैसे गीत गाता चल का आपका गाना है शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम
1: जी,
2: या फिर राम तेरी गंगा मेरी का वो गीत एक राधा एक मीरा, या फिर शाम तेरे कितने नाम में भी एक गीत है, या फिर प्यासा सावन का भी एक गीत है,
1: प्यार का सावन में जी हाँ
2: जी हाँ प्यार का सावन में
1: जी,
2: जिसमें कि उस गाने का विषय जो है राधा या मीरा है
1: जी,
2: और हमेशा आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है या करने की कोशिश की है राधा और मीरा के बीच में, तो आखिर राधा और मीरा के चरित्र आपको इतने प्रभावित क्यों कर पाए?
1: सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ब्रिज भूमि से मेरा ताल्लुक है
2: जी,
1: और वहाँ पे राधा और कृष्ण की आराधना है, तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी जब कविता लिखना शुरू करेगा उस क्षेत्र का आदमी तो उनसे, यानी उनकी आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो मीरा और राधा का जहाँ तक सवाल है, मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये एक ही रूप के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं, क्योंकि आराध्य तो दोनों का एक ही था, अब किसको मिला या किसको नहीं मिला ये तो गूढ़ विषय है इस पे कहना। जैसे मैंने इस गाने में, राज साहब के गाने में कहा है, अंतरे में आपने अगर ध्यान दिया हो कि राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया
2: जी हाँ जी हाँ,
1: तो प्राप्त करना, उपलब्ध करना, उसका आभास होना, कई बार वो भौतिक रूप में हम मानते हैं, कई बार मानसिक मानते हैं, आध्यात्मिक मानते हैं, तो वो अलग अलग बातें हैं।
2: अच्छा रविंद्र साहब, ऐसा है कि हमारे फिल्मों के साथ ये त्रासदी है कि अगर उस फिल्म के गाने पहले हिट हो जाएं तो फिल्म के चलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ये कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों है?
1: संगीत भारतीयों के जीवन में, यानी हमारे जन्म से पहले से
2: जी
1: शुरू होता है, ठीक है ना
2: जी,
1: यानी इतना जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर पहलू में संगीत है, कण कण में हम कह सकते हैं, और अंत तक संगीत रहता है, तो संगीत का लोकप्रिय होना बहुत स्वाभाविक है। और जिस फिल्म का संगीत जरा भी रिजनेबली अच्छा होता है, सरल होता है, लोगों तक पहुंच जाता है, तो वो लोग चाहते हैं कि फिर उस फिल्म को रिपीट करें, और संगीत मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी फिल्मों को रिपीट करवाने में उसका काफी हाथ है।
2: एक बात फिल्मी संगीत से संबंधित और साथ साथ इस हमारे सवाल का ताल्लुक गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुनें, गाने की धुनें पहले बना ली जाती हैं
1: जी,
2: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
1: जी,
2: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
1: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं, समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना, गजलों का भी गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं, उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
2: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
1: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धनी कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य में काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है, तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूंकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज़में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीजें हैं उसमें। हिंदी साहित्य में काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
2: अनुवाद काम,
1: जी अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
2: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
1: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूंकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
2: जी,
1: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
2: बंगला पे, उर्दू पे,
1: जी,
2: हिंदी में कर ही रहे हैं
1: जी जी। हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफी वक्त गुजारा है, वो खास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूजिक के लिए गया था।
2: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
1: म्यूजिक किया है उनके लिए, संगीत किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशोदास जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
2: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
1: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
2: अपनी भाषा होती है
1: जी।
2: तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा में?
1: नहीं, उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए,
2: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती
1: जी। नहीं
2: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
1: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं, जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, मुझे श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
2: जी
1: सीता माता को कि वे राम जी ने के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था राम

0: ने गीतकार, संगीतकार, गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
1: और जयंत जी,
0: जी
1: रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का, रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियां ताजा होने लगती हैं, उनकी आवाज हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती है। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलेडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: श्रोताओं, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहनो दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खासतौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्रीगंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपकी नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें, वो जबान सब मुल्कों की एक ही है
2: जी,
3: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
2: जी।
3: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
2: जी,
3: वो तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
2: जी।
3: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
2: सही बात,
3: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
2: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोड क्यों नहीं बनाया
3: जी,
2: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
3: थोड़ा सा असर है, फिल्मों में ज्यादा असर है
2: जी
3: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
2: अच्छा, और एक चीज अब खासतौर पर मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ

0: खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
1: जी,
0: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी, या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
1: हाँ ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी,
0: जी,
1: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफ़ी हेल्प, मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
0: अच्छा, तो ये
1: वो
0: तो खैर,
1: मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
0: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
1: नहीं नहीं
0: हाँ, जी,
1: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह दीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हों, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
0: जी,
1: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
0: जी जी एक इल्ज़ाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गजल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीतनुमा गजल ज्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीतनुमा गजल हो गई है? क्या गजल गायकी का भी कोई खास पैटर्न हुआ करता है?
2: ये तो देखिए अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं जिसमें, उतना डालिए। बाकी रही गीत और गजल, आप एक गजल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गजल को आप तीन चार शेर होते हैं, 3 मिनट में खत्म भी हो सकती है
0: जी।
2: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे 2 दिन में पहुंचे थे, आज आदमी चाहता है कि 2 घंटे में दिल्ली पहुंचे
0: जी,
2: क्योंकि इतना वक्त नहीं है ऑडियंस के पास भी, इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
0: जी,
2: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
0: हाँ, अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसे ज्यादा नहीं।
2: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
2: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
0: जी।
2: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल जी शेर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेर में हो, जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
0: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
2: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
0: जी,
2: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं 3 घंटे कान में, तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है।
0: जी हाँ जी,
2: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए, 7000 आदमी हॉल भरा हुआ, या इंडिया में भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया। वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कहीं कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
0: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
2: देखिए वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आपकी कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
3: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी, और श्रोताओं ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो।
1: सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
0: उर्दू अदब के एक महान शायर निदा फाजली, 12 अक्टूबर उनका जन्मदिन हुआ करता है और आज विविधा में हम निदा फाजली साहब को बहुत दिल से याद कर रहे हैं। उनकी एक खास रिकॉर्डिंग लेकर भी आज हम हाजिर हुए हैं श्रोताओं, जिसको हम थोड़ी ही देर बाद आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात जयंत जी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
1: मनीषा जी, मक्तिदा हसन निदा फाजली यानी हम सबके चहेते निदा फाजली साहब, इनके बारे में एक वाकया बताया जाता है कि जब वो किशोर वयन थे
0: जी,
1: एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, मंदिर में भजन चल रहा था और वो सूरदास का पद था जिसमें राधा अपने सखियों के साथ अपना दुख बांट रही है कृष्ण से बिछोह के बाद। उस रचना ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि तब से वो कविता की ओर मुड़ गए।
0: क्या बात है, एक शायर के दिल को ये बात बहुत गहरी लगी। और देखिए, यही होता है एक शायर का, एक कवि का दिल। इस महान शायर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग श्रोताओं हमने अपने संग्रहालय में संग्रहित करके रखी है, जिसके कुछ अंश हम आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं। निदा फाजली साहब से बातचीत की है अहमद वसी साहब ने, जो विविध भारती के पूर्व उद्घोषक भी रह चुके हैं और स्वयं भी एक शायर थे। तो आइए सुनते हैं मशहूर शायर निदा फाजली से अहमद वसी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
2: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहाँ वो दे सदा, तुझको कहाँ सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ और आपसे क्या क्या सवालात करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
3: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहां भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में और वो छत से

मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं, फिर वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया, जो सदियों की अमानत है, जो हम सबकी रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह खिलखिलाए।

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना अदीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अदीमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चॉइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम निदा फाजली था, उसके लिए मैसेज रखी होती थी हर जगह जहाँ वो काम कर रहा था, थोड़ा थोड़ा, कहीं धर्मयुग में मैसेज पड़ी हुई है, कहीं बिलिट्स में पड़ी हुई है, कहीं किसी रेडियो स्टेशन पर पड़ी हुई है। और वो मैसेज ये थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे मिलिए, आपसे कुछ काम लेना है, कमाल अमरोही। मैंने सोचा कि मेरा कमाल अमरोही से क्या काम हो सकता है, फिर भी क्योंकि स्ट्रगल हर रोज भागते हुए सूरज का पीछा करता है और सूरज उससे आंख में चोली करता है, फिर भी वो सूरज से पर अपने विश्वास को खत्म नहीं करता। तो मैं कमाल अमरोही के चला गया। कमाल साहब मिले 2 बजे के करीब, और वो स्टाइलिश आदमी थे कमाल साहब, एक लफ्ज भी अंग्रेजी का बोलते नहीं थे, और वो भाषा बोलते थे जो आज से 50 साल पहले अमरोहा में बोली जाती थी। मैं बम्बई आकर उस भाषा को भूल गया था। मैंने कहा कमाल साहब आदाब, मेरा नाम निदा फाजली है, तशरीफ रखिए, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया, उनका स्टाइल है, मैंने आपको इसलिए याद फरमाया कि मुझे एक मुकम्मल शायर की जरूरत है। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और ये इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया कि आप मुझे मुकम्मल शायर समझ रहे हैं। कि जी, मुझे आपसे कुछ नगमात तहरीर करवाने हैं। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ साहब, आप मुझे बताइए कि क्या गाना है, कैसा लिखना है। लेकिन इससे पहले कि आप गाना लिखें, मैं एक बात जाहिर कर देना चाहता हूँ कि इल्मी शायरी अलग होती है, फिल्मी शायरी अलग, और फिल्मी शायरी लिखने के लिए आपको मेरे मिजाज की शिनाख्त बहुत जरूरी है। जानिसार अख्तर मेरे मिजाज को पहचान गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मैंने कहा मैं ये शर्त तो पूरी नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा कि आपकी सिचुएशन पर कुछ लिखूं। तो वो अपनी सिचुएशन जो मुझे सुनाई उन्होंने, तो वो जुबान में सुनाई कि मैं भी थोड़ी देर के लिए हिल गया। कहे हमारी दास्तान उस मुकाम पर आ गई जहां मलका आलिया रजिया सुल्तान यानी हेमा मालिनी सियाह लिबास में मलबूस खरामा खरामा चली आ रही है, जिसे देखकर हमारा आलय अक्कासी खैर बकदम के लिए आगे बढ़ा। मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया। उनके असिस्टेंट ने बाद में कहा इसका मतलब ये है कि हेमा मालिनी सफेद घोड़े पर काले लिबास पहने हुए आ रही हैं और आलय अक्कासी यानी कैमरा उनकी तरफ मूव हो रहा है। तो मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स आई रोट फॉर दैट फिल्म, लेकिन उस फिल्म के बनने में इतना टाइम लगा कि कमाल साहब की गुडविल जो है उसने मुझे इंडस्ट्री में मशहूर कर दिया कि कोई ऐसा आदमी है जिससे कमाल अमरोही गाने लिखवा रहे हैं। तो जाहिर है कि नॉट निदा फाजली बट बिकॉज कमाल अमरोही इज मेकिंग हिम राइट। तो फिर मैं राज कपूर से लेकर यश चोपड़ा से लेकर इस्माइल शरफ तक मोर और लेस विद एवरी म्यूजिक डायरेक्टर आई वर्क्ड। मैं जिस युग में आया, जन्म लिया, वो युग पिछले युगों से अलग था। हालांकि मुझसे पहले गालिब का एक मशहूर शेर है कि बुलबुल के कारोबार पे है खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। मैं जिस जमाने में आया उनमें लड़कियां काफी चतुर हो चुकी थी, वो आपके चेहरा देखने के बाद आपके चेहरे पर लिखे हुए बैंक बैलेंस को भी देखना चाहती थी। बहुत से चेहरे अच्छे लगे, लेकिन मैं जो फासला तय कर रहा था वो एक रोटी से दूसरी रोटी का था। नदीर अकबर आबादी ने कहा था कि हमको तो चांद में नजर आती हैं रोटियां। तो मेरी जो अफेयर्स रहे वो यकतरफा रहे। मैंने चाहा, मुझे नहीं चाहा गया। मैंने इंतजार किया, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उन्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा, क्योंकि पढ़ी लिखी बाहोश हर लड़की को चेहरे के साथ बैंक बैलेंस और जेब के पैसे भी देखना चाहिए। और उस वक्त मेरे पास न फ्यूचर था न वक्त था। मेरी तलाश रोटी की थी, दिल को तलाश मोहब्बत की थी। दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे और वक्त निकले जा रहे थे। तो कॉलेज में मुझे याद है एक लड़की थी, मैं एमए कर रहा था अंग्रेजी में, तो वो 45 के एंगल में बैठती थी जहां मैं बैठता। फिर रास्ते में जब बाहर कॉलम मतलब क्लासरूम के बाहर गार्डन था, उस गार्डन में जब वो आती है तो गार्डन मुकम्मल हो जाता है। वो जिधर से गुजरती थी मालूम पड़ता था खुद संवरती थी, बल्कि पूरे माहौल को संवार देती थी। मैंने उस जमाने में एक नज्म भी गई थी, वो फूल फूल नजर सांवली सी एक लड़की जो रोज मेरी गली से गुजर के जाती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, सुना है वो किसी लड़के से प्यार करती है, बाहर होके तलाशे बाहर करती है। न कोई मेल न कोई लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे

जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीज़ें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा उन्नास से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतज़ार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली गई।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: ये भी
1: बात है,
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनके रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन संपन्न समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याह ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मित मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मित ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
6: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
7: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
8: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर, नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई दर...

ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है नाच के आना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बनना पड़ता है।

0: बीमार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे जो लोग
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
5: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वद्ध किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।
1: अभी आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। पीएम सेतु योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये योजना पिछले साल 4 अक्टूबर को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारने और उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए पाली में आज उद्यमियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा देने के लिए चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शिरकत करने का कार्यक्रम है। वे उद्यमियों से लघु उद्योगों के विकास के बारे में विमर्श करेंगे। इस अधिवेशन में राज्य भर के 1,200 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। आज विश्व पशु दिवस है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन का उद्देश्य पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा तथा अमानवीय व्यवहार को सामाजिक चेतना विकसित करना है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें रखी गई है। इसी कड़ी में सामाजिक चेतना के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं वन्य जीव सप्ताह के तहत सवाईमाधोपुर में रणथंबोर बाघ परियोजना की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है और निःशुल्क वन भ्रमण करवाया जा रहा है। पाली में मनरेगा के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें कार्यस्थल या जंगलों के पास काम करते समय भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेंडेट स्टॉर्क नामक पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। ये पक्षी उद्यान की छिछली झीलों में लगे पेड़ों पर घोंसला बनाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही पेंडेट स्टॉर्क ने जोड़े बनाने का भी काम शुरू कर दिया है और कुछ पुराने घोंसलों पर मैटिंग भी कर रहे हैं। केवलादेव उद्यान के एन ब्लॉक तथा वोटिंग एरिया में करीब 250 से अधिक पेंडेट स्टॉर्क ने डेरा डाल रखा है। इसके अलावा अन्य प्रजाति के पक्षी भी उद्यान में नजर आ रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट से केवलादेव उद्यान की रौनक बढ़ गई। इसे लेकर पर्यावरण और पक्षी प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही कई शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बार मानसून ने राज्य से 3 दिन की देरी से विदाई ली है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल 6 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि कई जगह पर अल सुबह हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात में ठंडक बढ़ गई और न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। नशा मुक्त राजस्थान 2029 अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने कल प्रदेश के 6 जिलों में एक साथ कार्रवाई कर नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। ANTF महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर, जालौर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में की गई इन कार्रवाइयों में 424 किलो से अधिक डोडा पोस्त, अफीम, MDMA और MD बरामद किए गए। कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जापान में चल रहे 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक चले इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिन्मय चैनल। आए सुनते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहाँ की गई पढ़ाइयाँ, तो बहुत सारी यादें हैं। और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं, तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में, तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में, और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बनता हर मकान है, जहां प्रेम बसी वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है, घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

नूतन और देवानंद पर फिल्म आएगा। ये गीत था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाए नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी, जिसे शाम को जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती, ये दीवारें बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोता, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है, और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि

हमारे श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की। महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गाँव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूं। ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले और अब तो

उसे बनाते और लगा देते थे। कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है, पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और न ही वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है। वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे, तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे, और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं, पर हाँ कभी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ, जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है। बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और ना जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार,

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे।

कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थीं, जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसी कुछ यादें हो तो आप ताज़ा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसरी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

घर की दीवारों के साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हां, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहां हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहां आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे? एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था? तो आप हमसे जरूर ये बातें ताज़ा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए, जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी जरूरत पड़ती थी, ना ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

शुदा, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है। आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़े हो जाते, बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे हम लोग, रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मजा आता था, उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भीगती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपटकर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीत था श्रोताओ गंगा मैया तो है प्यारी चढ़े हुए इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और कुमकुम नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी जरूरी है, और जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन हैं वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था। बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी, वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे हमारे परिवार की। बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं, तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे, और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं, वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफेद लेप होता है उससे बनाई जाती है, और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है, जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत, इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं, और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओं, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था, या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था, श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए, क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है, उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं, घर की बातें होती हैं, वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत, इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है? जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था, ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था, लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल के हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था, और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार, तो कुछ तो बिखेर देता था वहां पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला, तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो।

वीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओं, तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से जरूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहां लौटकर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो न सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल दो पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने तीन महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के बियाहत पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैज और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए

0: सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हरा कर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 84 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं, दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाश दीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: सी रामचंद्र की तर्ज साहिल उदयानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मन चाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मन चाहे गीतों को अपना हम सफर।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अंबाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता हर्ष, राधे, पारस, पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का। इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हजरत जयपुरी, मौसकार शंकर जयकिशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददवा साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन ट्रोमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन ट्रोमा इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के और इस गीत को सुनना चाहते थे। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुष जी और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए, भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूं।

0: पूछू ना भैया?
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहां से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे, नाम

0: कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
0: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
0: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
0: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
0: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
0: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
0: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
2: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
0: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
0: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
0: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया मेरे भी आंसू आ गए। सच मुझे तुम याद आ गई माँ।
0: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
0: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
0: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
0: जानते हैं, जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
0: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
0: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
0: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
0: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
0: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: अब मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
0: क्यों?
1: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
0: ये बचपना छोड़ो अनाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर बत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
1: होंगे मगर।
0: अनाम।
1: माँ इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
0: अनाम अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
1: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें। अनाम को पहली बार मां के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
0: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है? बस बस बस, यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर अब ठीक है। बस बस बस, ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
0: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
0: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न मां को समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती, घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा। आ,
3: आ, आ, आ, अनाम, खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा,
4: चल उठ
3: उठकर हाथ मुंह धो,
4: हाथ मुंह धोकर
3: नाश्ता कर, चल
4: स्कूल चल,
3: आ अनाम, नाटक कर
4: कर
3: नाटक कर,
4: अच्छा अभिनय
3: कर, चल तू उत्सव तू हंस खुलकर हंस, आ बाजा बजा, वायलिन बजा, बस बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान,
4: आज्ञा मत डाल, खुश रह, आंसू मत पी, खुल कर लो, खुल कर लो, खुल कर लो।
5: इस तरह नहीं कहा करता, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मुझे बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, अकेले ही जाना चाहिए, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए बॉयज नहीं आऊंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
6: अनाम
5: के लिए बॉयज नहीं
6: आऊंगा। अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
2: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना ना बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
2: अनाम, ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
2: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
2: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
2: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
3: अनाम की मां अब मिसेस बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
2: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
2: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
2: देखो अनाम।

0: ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
1: बस करो माँ।
0: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
1: ठीक है।
0: क्या ठीक है?
1: आगे से ख्याल रखूंगा।
0: कहाँ जा रहे हो?
1: सोने के लिए।
0: खाना तो खा लो।
1: भूख नहीं है।
0: ठीक है, जाओ।
2: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूछिल। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। तीन दिन भर आवारा गर्दी वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु, आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
0: मिस्टर बत्रा चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
0: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल, बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन मेरे अंदर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता।

0: महीनों हो गए मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे।
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
0: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
5: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
5: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
5: हाँ हाँ चलो।

0: सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।
1: जा रहा है, रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
0: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक। नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
2: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम

0: जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
1: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इट्सेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है।
0: जी,
1: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब।
0: जी,
1: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
1: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया।
0: जी,
1: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया।
0: जी,
1: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
1: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
1: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
1: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 0.5 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
1: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पाँव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पाँव हिल गया।
0: ओहो,
1: तो ये तपस्या होती है
0: जी,
1: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
1: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
1: और उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
1: उसकी साधना है।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।
1: परमेश्वर, तो यहां से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई, और 1964 में पहला सोलो बजाया मौसा साहब के लिए।
0: जी जी,
1: मुझे फिल्म याद नहीं
0: जी,
1: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
0: बड़ी बात होती
1: है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई, और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू
0: जी,
1: कव्वाल जो थे उन्होंने दी
0: जी,
1: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला। तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
0: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
1: तमाम
0: प्रदेशों में,
1: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
0: जी,
1: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो, या बंगाल हो, या कहीं भी हो,
0: साउथ हो,
1: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
0: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
1: इतना काम।
0: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
1: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग, और 66 में पहला घर ले लिया था।
0: वाह वाह,
1: और 17,000 रुपए का घर था।
0: क्या बात है।
1: तो पहला घर अपना
0: किस इलाके में था?
1: खार में।
0: जी जी,
1: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
0: जी।
1: तो वो पहला घर था 17,000 रुपये।

0: का 17,000 रुपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हज़ार रुपये कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही
0: काम
1: रहे
0: तो
1: थे।
0: कर ही रहे थे। तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए।
1: जी
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया।
1: जी
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया।
1: जी
0: अरेंजरमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक
0: इस
1: डायरेक्टरी।
0: इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे।
1: जी ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये
0: जी
1: अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई
0: जी
1: हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है
0: जी
1: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का,
0: जी जी
1: जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे। तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
1: नोटेशंस।
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हार्मोनी डाले। तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशंस।
0: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है।
1: जी
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया। मदन जी, आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो।
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज दी सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन?
1: अरेंजर है।
0: मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके साथ, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए। मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहां पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक जी,
0: सोनिक जी,
1: सोनिक ओमी की
0: सोनिक
1: जोड़ी
0: ओमी,
1: थी।
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो
1: जी
0: ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: बाबा,
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वहां लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था,
1: जी
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, 1.5 मिनट का पीस था, मुझे आज भी याद है। बोले नहीं राज, तुम कहीं मिस कर रहे हो,
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहां पे वो हीरो चला था और टक करके पांव की आवाज थी, वो
1: वाह,
0: तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था
1: ये मेमोरी सोनी
0: ये
1: जी
0: मेमोरी,
1: की
0: क्योंकि
1: कसम।
0: ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा, तो मुझे आज भी याद है उनका मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटेस्टिक अरेंजर, फैंटेस्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल का रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कम्पोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहां पे।

मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल का रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज टोटली कंपोज बाई मास्टर जी। हाँ, मदन साहब थे वहां पे।

0: जैसे मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तक फाइनल तक मैं वहां पे हूं, जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था,
1: जी
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाई मी, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आजा
0: जी
1: शाम होने आई में
0: जी जी
1: हॉर्न की आवाज आती है,
0: जी

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी, ये किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए साहब के साथ और सबके साथ, बसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटे जी थे जिन्होंने काम किया कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आर डी बर्मन के साथ काम किया, एस डी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनकी स्टाइल को फॉलो किया
1: जी। जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो

0: अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ। बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी।
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी।
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बंबई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे। जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ के आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया।
1: जी
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे
1: अच्छा
0: कार में। हाँ, वो
1: जी
0: 500 मीटर दूर थे, मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया, सुबह 6 बजे। बोले, मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा, मास्टर जी क्या हुआ? बोलते, यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा, क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 4:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबारी सुन्ना ला सगला बाया भने आबरा सेदे भाई तरफ हूँ घना घना राम राम भाई। देखो के आज बहुत बढ़िया और खुशी रो मौको है और वो खुशी रो मौको देखो के यूं तो चौपाल माते जद भी बैठा खेतीबारी कार्यक्रम लेन जद भी आवा हाजिर हुआ आपरे बीच में तो हमेशा ही रहे, पर आज रो जो को दिन है वो अपन देखो कि बहुत ही बढ़िया है और अच्छो दिन है। अच्छो दिन ये बात है कि आज रे दिन यानी 4 अक्टूबर 1991 अपने नागौर आकाशवाणी केंद्री स्थापना हुई और बी दिनों नागौर आकाशवाणी केंद्री स्थापना होनी एक बहुत बड़ी खुशी की बात ही सब किसान भाइयों वास्ते और दूसरा लोगों वास्ते भी। देखो कि आठों जो को नागौर किसान आकाशवाणी जो को केंद्र है और 1991 लेप्रो जग दिन स्थापना हुई बी दिनों लेप्रो ना हमेशा तत्पर रही है कि भाई किसान भाइयों ने नई नई जानकारी केड़ी दे सका, नया नया प्रोग्राम क्या सुना सका, जबकि भी नई जानकारी है नई योजना है खेतीबाड़ी रमाय ने कई नवाचार कर सका बीर बारे रमाय ने हमेशा बतौनी ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करी और भाया तई पूक परा भाया ने बीच में मैं लोग जाय परा भयानी बात सुनता की करबे खेती करे कहीं करता बिने लाई परा और आकाशवाणी हूँ रेडियो रे माध्यम हूँ पाची भाया तई पुगावता के फलाना गाँव रा किसान वो काम करे फलाना जगह अलग अलग वैज्ञानिक का आय परा और रेडियो रे माध्यम अपने जानकारी देवे कि भाई कहीं करनो चाहिए कहीं नहीं करनो चाहिए किसी फसल बोनी चाहिए पशु जगह है पशुआण अगर हरी बीमारी है तो अपन कहीं करनो चाहिए नई नई जानकारियाँ नई नया जकी विद्या है वे देखो कि सारी चीज़ा है जो को आपने बता रहा और जो को बरसों जो को 1991 देखो कि नागौर आकाशवाणी जो केंद्र है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय मतलब सब अनुवाद है 24 घंटा हाजिरी रही है और हमेशा भी देखो कि मैं लोग अटू है जो को आपने बढ़िया बढ़िया जानकारी देनी कोशिश करियाँ। अब इरमाई ने देखो कि चाहे भले किसी भी फसल हो बीरे बारे में भी जानकारी देवा और सारी चीज़ा है जगह जानकारी देवा। अबे तो कई बात अभी है भैया कि पहली खाली रेडियो और रेडियो माती कहीं हूँ तो रेडियो रोज सिंगल के भाई अपा यूँ कहूँ था कि अपनी भाषा मायने टावर कौन पकड़े

0: तो टावर मतलब जो सिंगल जाओ तो मेरी एक रेंज वे होती 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर का वही रेंज भी रेंज ती सुन पाऊँ था। अबे आजकल वह बात नहीं है, अबे आ बात है कि आप कठे भी हो जटे आप कने इंटरनेट री सेवा है तो आपरा मोबाइल रे मायने आप ऐप डाउनलोड कर परा न्यूज ऑन AIR भी माते हिंदुस्तान दे किया भी खूणा में आप है जो को सुन सको। तो आ बात कितनी बढ़िया बात है कि आप है जो को कटे भी सुन सको। और आज को नागौर जो की आकाशवाणी है नागौर धरती है जो कि मैं आप है जो को कटे भी सुन सको और इन मायने ध्यान लगा सको। तो ये बात है आके वहाँ कि आज वो दिन जो को है बड़ो खुशी री बात है। और अब देखो के अपा और की दूजोड़ी बात करा तो भाई आ बात है कि देखो के अपान जो का पशुधन है खेती बाड़ी की बात आप हरदम करता रहा कि अकर के किसान जो को है मेरी एक हाथ खेती है तो दूसरो हाथ पशुधन है। तो पशुधन देखो के पालना खेती माते भी फायदो है और खेती रा जगह धनी है भी यानी खेती के साथ साथ पशुधन भी राखन पड़े। और पशुधन मायने देखो कि बात आ है कि पशु राखण कई फायदा है कई फायदा वो है सा कि देखो कि पहली बात आ है अबारो जो को टाइम ना अपन लेव भी इसी जगह अपना अगर चाहे बात करा तो भी इसी बात करा कि शुद्धता री तो अपन चाहे गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है तो बिहान आप राखा तो बिहान राखा जाना देखो कि दूध जो को वही दूध एकदम शुद्ध वही और भी दूध देखो कि दही जमीन दही बिलावण करो जाना आप छाछ भी वे घी भी आई बाल बच्चा छोटा मोटा सब अगर दूध पी तो बिर मायन कोई मिलावट नहीं आवे और बिर मायन मिलावट नहीं आवे तो आप ने तो घी में मिलावट आवे ने दूध मायन आवे और ने दही मायन आवे। आ तो ये एक शुद्धता री बात पहलो फायदो तो वो दूजो फायदो बीना जगह जानवर जगह वही बीऊ बढ़ोतरी वही अगर आप ज़्यादा साल संभाल कर सका तो आप बीऊ राख सका और जे बेचा तो बीने अपनी आमदनी भी वही। तीजो फायदो बीहण जो को गोबर है बीरू खाद बनी और वो खाद अपा अपने खेत मायने ने का जाना फसल बढ़िया वही। रासायनिक खाद कई गुणा तुलना वो जो को गोबर खाद है गोबर खाद रमाइन देखो कि जगह गाय भैंस या गोबर खाद रमाइन यो अपन जगह भेड़ बकरी हाँ जगह ना अपनी भाषा रमाइन मींगणियाँ कहवा तो वो गाय भैंस रखा दूँ भी और बढ़िया है बिनने का तो फसल बढ़िया वही। और इर मायने देखो कि रासायनिक खाद तो जीती बार आप फसल बावा बीती बार नेकणो पड़े पर ई खाद ने देखो कि अपना जगह जानकार किसान भाई है बे कहवे वैज्ञानिक भी कहवे अगर आप जे एक बार खेत मायने डाल दियो तो दो तीन साल आपने पाछो देखने जरूरत कोनी मतलब वो खाद दो तीन साल तक आप काम करे। बी खाद नहीं अगर जे थोड़ी विधि और कर ला जे भी ने जैविक बनाए ला कंपोस्ट खाद जे भी तैयार कर ला तो देखो कि और भी घणो फायदो पर ए चीजा वही कद ए वही जद जद आपन वही पशु। अब बात देखो कि आओ एक भाई पशु राखा देखो कि पशु राखा जन मिनकान मायनी हरी बीमारी तो वे तो पशुओं में भी देखो कि हरी बीमारी वे भी है। तो ये बात कही है कि कई चीज़ें ऐडी है कि एक तो वह कि भाई कोई बीमार पड़ गो और पच बिना आप अस्पताल ले जावा या जगह डॉक्टर साहब या कंप्यूटर साहब जो भी जानकार है बिहान आप देखा एक आवे वो बीमार पड़े ही नहीं एडो कोई गोली दवाई टीको अजावे तो और भी बढ़िया। तो ये बात जगह अपन पशु है पशु अनुमान कहीं एक कि तीन जकी है विशेष जगह रोग है वे मोटा रोग है तो जान एक तो खुरपका मुँह पका रोग है इरू अब अपन कहीं ठापड़े सा कि बीर मायन जान अपन पशु में मुंडा में छाला हुई गा है खुर मायन कोई घाव पड़ गो है दूध जे एकदम देवणो वो बंद कर देवे और वो आवो फैलन आलो रोग है गलगोटू है वो बरसात टाइम में ऊन आलो इर मायन गड़ सूझ जावे बुखार आऊँ लाग जावे एक लंगड़ो बुखार है बीर मायन पगम उजना जावे लंगड़ापन हो जावे। तो देखो कि इन कहीं है कि सब आना टीका लग गया करे और ए टीका ज्ञान खुरपका और मुँह पका रही अपन बात करा तो वो गाय और भैंस में दो बार लग गया करे दो साल रामायण है, अब हम भी हम कोई लगा सका, जैसे एक तो लग गया करे सितंबर में और एक लग गया करे मार्च में। और गलगोटू और लंगड़ो बुखार जो को है बीरो साल में एक बार ही टीको लागे, वो लागे कि मानसून जो को आवे मतलब बरसात री जगह सीजन आवे बीरो पहली यानी मई जून महीनो आप मान लो बीर मायने लागे। और जकी अपने भेड़ बकरियां है इन मायने कहीं या करे कि एक रोग हुए जगह ना आप पेटू रोग कह सका, तो बीर बोलिया करे भाई बीर पीपीआर को एक टीको लागे कर, वो साल में एक बार लागे वो जकी कई बीमारियां जकी पलक जड़ा रोग है बे होया कौन करे वो आप पहली लगा सका। और एक होया करे देखो कि बिन अंग्रेजी में टीके हुए हाथ गलगोटू भी आप कह सका, बीरो भी साल में एक बार ही टीको लागे, वो लाग गया करे दिसंबर मायने देखो चेचक रोग जो को है वो कौन हुए। तो यह चीज़ा है अपने हाथों हाथ एक ध्यान अपन ने और आगनों पड़ी, वो और आगनों पड़ी कि अब मान लो भाई टीको लगाओ ना बीर होगा हेलो टीको लगाया वहाँ पर भैया यू टीको कौन लगे, पाँच चीज़ें अपन ध्यान रखनी पड़ी, टीको कणाक लगानो चाहिए कणाक नहीं लगानो चाहिए, टीको अपन बी टाइम लगानो कि अपन जो पशु है वो निरोग है बी टाइम लगावा बीमार हुए जन कौन लग गया करे वो टीको। और टीका जो टाइम है वो सुबह शाम ठंडो मौसम हुआ ना बी टाइम अपन लगानो है, और पर ध्यान और आगनो है दो तीन दिन तक देखो कि पशु ने थोड़ो आराम कर देना धुआनो नहीं है मतलब अनुआने ज्यादा करनो काजवनो नहीं है। और हाथों हाथ अब भी है आ नहीं है कि मन आया जो कहीं लिया है टीको लिया दुकान में तू और कहीं है हुई है जो हुई ठोक दूँ क्यों भाई देखो जानकार वे कह के यहाँ से हूँ लगा दूँ, अब वो जानकार डिग्री लियोड़ नहीं है ठोक रही उन माते नहीं बीरू नुकसान हो जाए। तो अपने जो सरकारी अस्पताल है या जगह जानकार डॉक्टर है जगह प्रशिक्षित है प्रशिक्षण लियोड़ा है तो बिया कन्नो ही बहुत टीको लगवाना है, आता पंचायत अपन ने नहीं करनी है आ ध्यान रखनी बात है। और जे देखो कि टीको अगर लगावा तो कई बार हल्को बुखार भी आ सके पशु ने थोड़ी घनी कोई सूजन भी आ सके, देखो आप टाबरा नहीं पहली छोटा वेजन लावा नहीं लगावा जहाँ अपन ठा पड़े उड़े बताओ आए भैया डेल उन्नो है अरे तो वो घबराने बात को नहीं भाई वो टीको लगाए वहाँ तो एक खातर वो घबराने नहीं है आ ध्यान रखो। एक बात और है पशुआनो टीका जगह अपन लगावाना इन एक कार्ड बने जीव अपन छोटा टाबरा कार्ड बने ना जीव इन एक कार्ड बने तो वो कार्ड अपन बनावा तो कार्ड बनावा जन कहीं है अपन ठा पड़ी कि भाई वो टीको ई महीना में लागोड़ो है ई रे ओ टीको अपन जो नाव कहवा नहीं के बा छपगा आली बकरी नाव दूजो कह दियो बा थोड़ी घनी कम हिंगड़ा वे जगह अलग कह दियो तो बीस आप नाव तो आप पुकार जी अपने भी मैं जो बनावा डायरी में लिख लो कि अब जो छोटा हिंगड़ा ले रे ओ लगायो मोटा हिंगड़ा रे ओ लगायो कालची बकरी ओ लगायो धोलची बकरी ओ लगायो या खूंट की भेरे ओ लगायो तो आप यूँ लिख लो तो अपन ने कहीं है कि तकलीफ होनी पवे। तो देखो बात आ है कि बात और भी घणी करनो विचार है मैं करूँ आज बात था कहूँ टेम रो भी ध्यान राखूँ पर मैं आज एक गियो गईत रहे बन मैं कहीं बात करी आयो तो अब बे मारे और भी आने कहीं बात हुई तो थे लो आ बात सुनो। मैं देखो कि आज गवण माने निकले आने अते करनो आते चारा पहाड़ देखता देखता निकले आने अब देखो कि आने खेत आयोड़ा है चारा पहाड़ेन कई डाणियाँ भी दिखेन कई भाई लोग हैं जो को काम भी करेन। एक भाई है देखो के उबा दकानी पूछा कि वो गांव है किस गांव री ढाणियाँ है कहीं नाव है कहीं काम काज है दकानी आते भी जी करा राम राम सा
1: राम राम सा राम राम सा
0: कहीं सा कहीं नाम आप रो
1: मेरा नाम सरवण है सा
0: सरवण जी ओ की ओ गाँव है
1: ओ आई को नागड़ी में जसवंत नगर
0: नागड़ी रमायने जसवंत नगर तो ए ढणिया है तंगे
1: ढणिया है सर
0: ढणिया है तो नागड़ी गांव पूरी ढणिया में बसोड़ो है के गांव है
1: गांव है सा गांव में
0: अलग अलग जाताने हिसाब गांव बसोड़ है
1: हाँ अलग अलग जाताने हिसाब
0: तो पूछे आ ढणिया जे किते और जसवंत नगर गांव बताओ तो वो एक ही ढणी है गांव री की औरू अलग अलग औरू है या में
1: नहीं अलग अलग जो मतलब बसीवान में बेणीवाल अलग है लोल अलग है लोल बेणीवाल है जगह जसवंत नगर में है बाकी लार ले जाता है जगह पाची अलग अलग जो गांव फंड को रूप नगर है
0: किता है डाणी कितनी अगली लगभग
1: डाणिया
0: चार पांच है या हली
1: 30 है डाणी बेणीवाल ने है 85 कांड कर है जगह मान डाणिया है जगह लोलाणी
0: अलग अलग जगह बसवा
1: अलग अलग जगह
0: ग्राम पंचायत किसी लगे
1: ग्राम पंचायत नागड़ी है सर
0: ग्राम पंचायत नागड़ी है तो मतलब

0: भयो सुन्यो आप हरिराम राव और बिहानी पार्टी गाड़ो लोकगीत
1: हेलो हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा

0: तो शहरों में?
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: और भैया देखो के गड़ी सम जमा तो अपन जो को खेती बाड़ी रो जो को तेवड़ी रो टाइम है वो है पूरा, तो आप सीधे भाई ने दिराओ सीख करा। राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 5 बजने को है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं युवाओं की अपनी आवाज़, अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे साथी नेहा नारायण सोनी। तो आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत गीत, कुछ नए विचार और ऐसी बातें जो सीधे जुड़ती है आपकी ज़िंदगी और आपके सपनों से। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए केवल सफलता ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही सोच, सही दिशा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना भी बेहद ज़रूरी है। एक युवा जब अपने सपनों के साथ अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी छोटी सी पहल भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे विश्व पशु कल्याण दिवस के बारे में। तो हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पशुओं के प्रति दया, करुणा और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके कल्याण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे आसपास रहने वाले पशु भी प्रकृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी भी है। साथियों, भारतीय संस्कृति में जीव दया की भावना का विशेष महत्व रहा है। इसका अर्थ केवल पशुओं को नुकसान न पहुंचाना ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय उनकी सहायता करना और उनके प्रति करुणा रखना भी एक ही बात है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए पानी रखना, घायल या बीमार पशु को देखकर उचित सहायता दिलाना, सड़क पर वाहन चलते समय पशुओं का ध्यान रखना और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न करना जीव दया के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, इस पर टॉपिक पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे विश्व पशु कल्याण दिवस के बारे में, तो इसमें युवाओं की भूमिका भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। साथियों, युवा अपनी ऊर्जा और रचनात्मक माध्यम से पशु कल्याण के संदेश को समाज तक पहुंचा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के युवा जागरूकता अभियान चला सकते हैं, पशु संरक्षण से जुड़े संगठनों के साथ स्वैच्छिक यानी कि खुद की इच्छा से गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जिम्मेदार पशु व्यवहार का संदेश भी साझा कर सकते हैं। तो आइए विश्व पशु कल्याण दिवस पर संकल्प लें कि हम जीवों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखेंगे, क्योंकि किसी कमजोर जीव की मदद करना केवल उनकी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाता बल्कि हमारे भीतर की इंसानियत को भी मजबूत करता है। साथियों, अब चर्चा करेंगे साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन गेमिंग और वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं साथियों कि आज इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, मनोरंजन, खरीदारी से लेकर बैंकिंग तक बहुत सी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही हमें साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना सकती है। इसलिए साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आज युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग भी काफ़ी लोकप्रिय है। गेम खेलते समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, OTP या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें। किसी गेम या वेबसाइट में भुगतान करने से पहले ये जरूर जांच लें कि वह आधिकारिक या भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है या नहीं। अनजान लिंक, संदिग्ध ऑफर या फ्री रिवॉर्ड या लॉटरी के लालच में किसी लिंक पर क्लिक करने से बचें। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, आपको देंगे और जानकारी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।
8: I experience it too.

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर सुरक्षा के बारे में। तो आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, मनोरंजन, खरीदारी से लेकर बैंकिंग तक की बहुत सारी सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आजकल युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग का भी काफ़ी क्रेज है। साथियों, गेम खेलते समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, OTP या बैंक संबंधी जानकारी भी हमें साझा नहीं करनी चाहिए। किसी गेम या वेबसाइट में भुगतान करने से पहले भी ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ये भरोसेमंद या आधिकारिक है या नहीं है। तो इसी तरह वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए भी कुछ बुनियादी सावधानियां बहुत ज़रूरी है। साथियों, बैंक या किसी वित्तीय संस्था का कर्मचारी बनकर कोई व्यक्ति आपसे OTP, UPI पिन, पासवर्ड या कार्ड की जानकारी मांगे तो उसे कभी भी साझा न करें। याद रखें, OTP और UPI पिन किसी के साथ साझा हमें नहीं करनी चाहिए। अगर किसी साइबर धोखाधड़ी हो भी जाए अगर किसी के साथ, तो घबराने के बजाय तुरंत अपने बैंक या संबंधी वित्तीय संस्था से संपर्क करें और भारत में 9130 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथियों, याद रखिए, साइबर दुनिया में सावधानी ही सबसे मजबूत सुरक्षा है। अब बात करेंगे समय प्रबंधन और टामाटोल की आदत से बचने के कुछ उपायों के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि

समय हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीजों में से एक है। एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता। फिर भी कई बार हम जरूरी काम को ये सोचकर टालते रहते हैं कि थोड़ी देर बात कर लेंगे या थोड़े समय बात कर लेंगे। यही आदत धीरे धीरे टामाटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का रूप ले लेती है। इससे काम का दबाव बढ़ता है और तनाव भी महसूस हमें धीरे धीरे होने लगता है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों से इसे कम किया जा सकता है, जैसे कि दिन की प्राथमिकता तय करें। सुबह या रात को अगले दिन के 3-4 जरूरी काम लिख लें और उसे सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करने की कोशिश करें। अगला है, बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बड़ा काम मुश्किल लगता हो सकता है तो इसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर एक एक करके पूरा करें। शुरुआत करना आसान हो जाएगा। दूंगी मैं आपको और भी टिप्स, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की टिप्स के बारे में। तो दिन की प्राथमिकता हमें तय कर लेनी चाहिए, यानी कि सुबह या रात को अगले दिन की 3-4 ज़रूरी काम हमें लिख लेने चाहिए। अगला है कि बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा काम मुश्किल हमें लगने लगता है। अगला है केवल 5 मिनट से शुरुआत करें। मन ना होने पर भी खुद से कहें कि बस 5 मिनट हमें काम करना है। शुरुआत हो जाने के बाद काम जारी रखना अक्सर आसान हो जाता है। अगला है मोबाइल और सोशल मीडिया का ध्यान रखें। काम या पढ़ाई के समय अनावश्यक नोटिफिकेशन को हमें बंद रखना चाहिए। अगला है समय सीमा हमें तय करनी चाहिए। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करना बेहद जरूरी है साथियों। अगला है एक समय में एक ही काम करें। बार बार काम बदलने के बजाय एक काम पूरा करके अगले काम पर जाएं, इससे ध्यान बेहतर बना रहता है। अगला है खुद को छोटी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करें। दिन के जरूरी काम पूरे होने पर अपनी प्रगति को पहचानें। याद रखें, समय का बेहतर प्रबंधन ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करने से होता है साथियों।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं। अब छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा हमारे केंद्र से। कार्यक्रम का नाम है बालवाड़ी।

जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को जीना ही असली हुनर होता है। जी हाँ, जय हिंद बच्चों, मैं हूँ आपकी रईसा दीदी, लेकर आई हूँ रोचक जानकारियों से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बालवाड़ी। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दिन 1869 में पोरबंदर गुजरात में मोहनदास करमचंद का जन्म हुआ, जिन्हें हम प्यार से बापू राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश भी दुनिया को दिया, स्वच्छता ही सेवा है और स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। बच्चों, गांधी जी कहा करते थे, कोई व्यक्ति अपने काम से तब तक स्वच्छ, काम से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को हर काम अपने पूरे सच्चे लगन और मेहनत से करना चाहिए। बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य खुले में शौच से मुक्ति, हर घर में शौचालय, गीला और सूखा कचरा अलग करना और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। प्यारे बच्चों, आप भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे रोज सुबह अपना बिस्तर और कमरा खुद साफ करना, कचरे के डस्टबिन का उपयोग करना, नाली या आंगन में पानी ना जमा होने देना ताकि मच्छर और डेंगू ना फैले, कम से कम पानी और बिजली का उपयोग करना और बड़ों को भी इस बारे में समझाना। इसके अलावा बच्चों, क्लास की सफाई की जिम्मेदारी खुद लेना, टिफिन का कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना, दीवारों पर ना थूकना और ना ही लिखना, बच्चों पौधे हर रोज लगाना और उनकी देखभाल करना भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस प्रकार से बच्चों, सच्ची गांधी जयंती तब मनेगी जब हम सिर्फ गांधी जी द्वारा बताए हर नियम का सच्चे मन से पालन करेंगे, उनके द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग को अपनाएंगे। और फिर देखना, आप पूरा राजस्थान क्या पूरा भारत ही अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए बच्चों, जब भी आप अपने जीवन में कुछ काम करें, गांधी जी द्वारा बताए गए हर मार्ग का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

प्यारे बच्चों, अभी आप सुन रहे थे जागृति फिल्म का गीत। बच्चों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा लगता है मानो हमारे जीवन में प्लास्टिक हर जगह घुस गया हो। दुकान से लाई थैली से लेकर पानी की बोतल तक, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक। लेकिन प्यारे बच्चों, जो चीज़ हमारी सुविधा के लिए बनी थी, वही चीज़ आज हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इसलिए महात्मा गांधी जी के स्वच्छता ही सेवा के संदेश को याद रखते हुए हमें प्लास्टिक मुक्त जीवन अपनाना बहुत जरूरी है। बच्चों, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी धरती और पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये एक ऐसी सामग्री है जो आसानी से नष्ट नहीं होती और सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बनी रहती है। धरती पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को आप कई तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी के उपजाऊ क्षमता का नष्ट होना, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है, जब यह मिट्टी में दबता है तो हवा और पानी के रास्ते को रोक देता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, फसलों को नुकसान होता है। प्लास्टिक के बारीक कण मिट्टी में मिलकर पौधों और फसलों के विकास को रोकते हैं। फिर बात आती है जल प्रदूषण और समुद्री जीवों की, तो बच्चों जल स्रोतों का इससे रुकाव होता है। प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें हमारी नदियों, नालों और नालियों को जाम कर देती है, जिससे बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाता है। व्हेल, कछुए और मछलियां इसे खाना समझकर निगल जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है, यानी समुद्री जीवन का अंत होता है। फिर बात आती है वायु प्रदूषण, जलाने में भी प्लास्टिक से खतरा ही है। जब प्लास्टिक कचरे को जलाया जाता है तो इससे बेहद हानिकारक और जहरीली गैसें निकलती है, जैसे डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन। गंभीर इससे बीमारियां होती हैं। ये जहरीला धुआं हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है और इंसानों में कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियां पैदा करता है। ये खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश करता जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक समय के साथ प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। इन्हें पहले छोटे जीव या मछलियां खाते हैं, फिर भोजन के जरिए ये इंसानों के शरीर में भी पहुंच रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक आते हैं। तो बच्चों, अब बात आती है इसकी इस समस्या के समाधान की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक को कहे ना। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े, जूट या कागज के थैलों का इस्तेमाल करें, रीसाइकल करें। प्लास्टिक कचरे को इधर उधर फेंकने की बजाय रीसाइकल करने के लिए रीसाइकलिंग बिन में इन्हें डालें। जागरूकता फैलाएं, अपने आसपास के लोगों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताएं। इस प्रकार से बच्चों, प्लास्टिक का बहिष्कार एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हमें इसे एक अपनी आदत बनाना होगा। अगर हम आज एक प्लास्टिक की थैली को ना कहेंगे तो कल हमारी धरती खुलकर सांस लेगी और इस स्वच्छ धरती में हम खुद भी खुलकर सांस ले पाएंगे। इसलिए बच्चों, प्लास्टिक का बहिष्कार हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे ईमानदारी की। ईमानदारी वह गुण है जो हमें बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से निकाल सकता है। इस बात को बच्चों आप एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता। वो स्कूल से पैदल घर आता। उसकी माँ बहुत बीमार थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल से आते समय राजू को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। राजू ने बटुआ उठाया और खोल कर देखा तो उसमें 5,000 रुपए थे। राजू का मन एक बार डोला, इतने पैसों में मैं माँ की दवाई ले आऊंगा और घर का राशन भी। लेकिन तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। बेटा, दूसरों का पैसा कभी अपना नहीं होता। राजू ने बटुए के कार्ड में उस बटुए के मालिक का नाम और पता देखा।
राजू उसी रास्ते पर चल पड़ा। राजू कुछ समय बाद उसी पते पर पहुंच भी गया। वहां एक बूढ़ा आदमी रो रहा था। राजू ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मेरी बेटी की फीस के 5,000 रुपये मेरे बटुए में थे और वो बटुआ मुझसे कहीं खो गया है। राजू ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वो बटुआ निकाला और बाबा को दे दिया। बटुए को देखकर उसमें मौजूद अपने पैसों को देखकर बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बच्चों, वो बाबा बहुत बड़े स्कूल के मालिक थे। राजू की ईमानदारी को देखकर उन्होंने कहा, कल से तुम मेरी स्कूल में मुफ्त में पढ़ोगे और मैं तुम्हारी बीमार माँ का इलाज भी करवाऊँगा। यही तुम्हारी ईमानदारी का फल है। राजू खुशी खुशी घर लौट आया। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी से मिला पैसा थोड़े दिन ही साथ देता है, पर ईमानदारी से मिला सम्मान जीवन भर साथ देता है। इसलिए बच्चों, ईमानदारी के गुण को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत।

प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे देश की ऐसी अजीम शख्सियत की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू और पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका जीवन हमें सिखाता है बच्चों कि बिना हथियार उठाए भी सच और अहिंसा से सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। बच्चों, अगर हम उनके अब बचपन और शिक्षा की बात करें तो गांधी जी के पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। उनकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी। पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए, वहां से बैरिस्टर यानी वकील की डिग्री ली। वे इंग्लैंड में भी अपना भारतीय रहन सहन नहीं भूले और शाकाहारी भोजन ही करते थे। वकालत करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका भी गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों और काले लोगों के साथ अंग्रेज बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एक बार ट्रेन में उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, जबकि उनके पास टिकट था। यहीं से उन्होंने अपने अपमान के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह हथियार की खोज की। 1915 में वह भारत लौट आए और उन्होंने भारत के गांव-गांव में घूमकर लोगों की समस्या को देखा और उनके नेतृत्व में कई आंदोलन भी चले। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू किया। बिहार के किसानों के लिए ये पहला सफल आंदोलन था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920, अंग्रेजी सामान, स्कूल और नौकरियों का बहिष्कार इसमें शामिल था। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930, उन्होंने 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उन्होंने नारा दिया करो या मरो का नारा। प्यारे बच्चों, गांधी जी के बहुत ही खास विचार और सिद्धांत थे। वे कहते थे सत्य ही ईश्वर है, किसी को मन वचन कर्म से कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। उनका मानना था स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। वे खुद आश्रम का शौचालय खुद साफ किया करते थे, खुद की बनी खादी पहनो, आत्मनिर्भर बनो, उनका चरखा इसी का प्रतीक था। बच्चों, देश को आज़ादी तो मिली लेकिन बंटवारे के साथ। वे इस बंटवारे से बहुत दुखी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करते थे। तभी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से बच्चों, गांधी जी शरीर से जरूर चले गए लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। पूरा विश्व 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। अगर आज का बच्चा भी उनके बताए रास्ते पर चले, सच बोले, किसी से लड़ाई ना करे और अपने घर स्कूल को साफ रखे तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों, गांधी जी ने जो भी हमें बातें बनाई उनका बताई उनका सच्चे मन से हम सम्मान करें और अपने जीवन में जरूर उतारें। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ बच्चों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब कहते हैं अलविदा बच्चों, रखिएगा अपना ख्याल, जय हिंद।

अभी छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया बालवाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर बाद हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। आवाज राहत फतेह अली खान की है, गीतकार सबीर अहमद है, संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है।

ये तो थे राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल बॉडीगार्ड फिल्म में। लीजिए अब सुनिए दबंग फिल्म में राहत फतेह अली खान को। गीतकार फैज अनवर और संगीतकार साजिद वाजिद हैं।

लीजिए, सुनिए कार्यक्रम के आखिर में लवर्स फिल्म का एक दो गाना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर है और संगीतकार राजेश रोशन है।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म लावारिस के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए दयाराम गुजर का गाया लोकगीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: लीजिए सुनिए दयाराम गुजर का गया ये लोक भजन।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम माटी किश्वर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:28 हुए हैं। कुछ देर बाद पहले हिंदी और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिलीज किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से। ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया। एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवा

0: आने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई तथा स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के समक्षेत्र में दो नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पाली में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने छोटे उद्यमियों, कारीगरों और व्यापारियों को नई ऊर्जा दी है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और कृषि उत्पादों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में सांसद मदन राठौड़ और पीपी चौधरी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण पक्षियों को छोड़ा। इस अवसर पर वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। श्री यादव ने कहा कि लुप्त

0: आए पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
1: ये आज दो गोनावन मेल छोड़े गए हैं, पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम में और रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सितंबर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोनावन इस जगह की शान है।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति की संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन का उद्देश्य पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार को कम करना है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखे रखी गई है। पशु दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पशु दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर वन्य जीव सप्ताह के तहत सवाईमाधोपुर में रणथंभौर बाघ परियोजना की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और विद्यार्थियों को निःशुल्क वन भ्रमण करवाया जा रहा है। वहीं पाली में मनरेगा के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों के लिए विशेष जागरूकता सत्र रखा गया। इस दौरान उन्हें कार्यस्थल या जंगलों के पास काम करते समय जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये योजना पिछले साल आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यवहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान 2026 आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्राधिकरण परिसर में नागरिक सेवा केंद्र में जोन वार सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहरी नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनसे संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 साल से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इसीलिए ऐसे मामलों के समाधान की सफलता दर 71.79% रही है। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इसे मुख्य रूप से माल और सेवा कर जीएसटी के रूप में लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किए गए इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य देश भर में फैले कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनाना था। एक रिपोर्ट।
2: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग की विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान परियोजनाओं पर अमल से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने इन खेलों में इस बार 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के समक्षेत्र में 2 नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। नगर निकाय चुनाव 2026 में सीकर नगर परिषद की नव निर्वाचित सभापति खतीजा बानो ने पिछले दिनों सभापति पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परिषद में नई जन प्रतिनिधि व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभापति ने कहा कि शहर का समग्र और संतुलित विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था उनकी प्राथमिकता रहेगी। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में पंचायत समितिवार मतगणना कक्ष निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों सीकर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा जनसभा को संबोधित किया। अपने प्रवास में श्री शर्मा ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में आंगन मिलन सेवा का आयोजन रखा गया। अजीतगढ़ और दिवराला सेक्टर के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर ये कार्यक्रम हुए। इसमें महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म

0: में पूरी कर उन्हें पोषण किट वितरित किए गए। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। कार्यक्रम में श्री खर्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की देखरेख करने के साथ साथ समाज की खुशहाली, पोषण और संस्कार निर्माण की सबसे मजबूत बुनियाद हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत बीते दिनों सफाई मित्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद सभागार में हुए इस समारोह में सफाई मित्रों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने सफाई मित्रों से संवाद कर उनके कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की। आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना नगर परिषद की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र और आरआर सेंटर में कार्यरत महिलाओं से भी संवाद किया गया। जिले में मानसिक स्वास्थ्य माह के तहत जिला कारागृह में कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, तनाव प्रबंधन के उपाय बताना तथा सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान मन दर्पण 2 के तहत विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन लोक संस्कृति, कला और विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए। रामगढ़ फतेहपुर स्थित जगदीश मंदिर में मांगणियार, कालबेलिया और रोबिला सहित विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। जिला संग्रहालय में कच्ची घोड़ी, कठपुतली शो तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए श्री कल्याण स्कूल के 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरों पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहली आजरी खास खास खबरां। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया देश रा संस्थाना एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट नेशनल पार्क रा सम खेतर माए दो नर गोडावण ने प्राकृतिक आवास माए छोड़िया। देश माए हाल ताई आयोजित 16 पेंशन अदालता माए 20,676 शिकायतों रो मौका माथे ही हल काढ़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन। पदक तालिका माए भारत चौथी ठोड़ माठे रियो। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया के देश रा संस्थाना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत बनेला। नई दिल्ली माए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रा 58वां स्थापना दिवस जलसा माए वे कया के निवेशक रो विश्वास हासिल कर ही देश तरक्की कर सके है। उपराष्ट्रपति कया के भारत दुनिया री समूह तेजी सु बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वा माए भेड़ो है और तेजी सु वैरिया तकनीकी बदलावारा दौर माए दाखिल वैरियो है। श्री राधाकृष्णन कया के देश माए बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस ने बढ़ावो देवा माए

0: संस्थान रो योगदान सराहनीय रियो है। इन वास्ते ओ टिकाऊ विकास रा हल्का माए वैश्विक मानक थापित करियो है। बड़ा विश्वास जतायो के आत्मनिर्भर भारत बनाबा माए संस्थानारी कोशिशा सु भारत दुनियारी सबू बड़ी माली व्यवस्था बन सके है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पाली माए लघु उद्योग भारती री कानियों राख्या उद्यमी सम्मेलन माए भाग लीना। इन मौके वे कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री दूरदर्शी अगुवाई माए मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जेड़ा अभियान छोटा उद्यमिया कारीगरा और व्यापारियों ने नई ऊर्जा दी है। वे कया के महा का स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजार ताई पूग रिया है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमियासु कया के वे राजस्थान माए मुहैया स्थानीय संसाधना और कृषि उत्पाद माथे आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर बाखातर आगे आवे। वे कया के देशरी अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो देबा माए एमएसएमई री महताऊ योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम माए सांसद मदन राठौड़ पीपी चौधरी समेत बड़ी संख्या माए उद्यमी मौजूद रिया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेर माए डेजर्ट नेशनल पार्क रा सम हल्का माए दो नर गोडावन पक्षी छोड़िया। इन मौके वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रिया। श्री यादव खबर नवेसासु बातचीत माए कया के या उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और कर्मचारियों री एक दशक री मेहनत रो नतीजो है। वे कया के पक्षियों ने जंगल माए छोड़बाजू वारा संरक्षण माए लाभ मिलेला। श्री यादव कया के खत्म होता पक्षियों ने बचाबा खातर सरकार खास कोशिश कर रही है।
2: ये आज दो गोडावन मेल छोड़े गए हैं पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम में और रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सितंबर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोडावन इस जगह की शान है।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ओ दिवस पशुआ ने बचाबा सु प्रकृति रो संतुलन बनियो रहवे है ओ संदेश देवे है। इन दिन रो लगस पशु कल्याण री कानी जाग जगाबा और वारस आगे वैरी जोर जबरदस्ती और बुरा व्यवहार री कानी सामाजिक चेतना बढ़ानो है। इन वर्ष री थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें राखी गई है। इन मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया संदेश माए लोगा सु जिनावरा ने बचाबा बढ़ावा और मारी कानी दया और प्रेम रुभाव राखबा ने कया। पशु दिवस मासे प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम राखिया गया। वठी ने वन्य जीव सप्ताह रे तहत सवाई माधोपुर मा रणथंबोर बाग परियोजना री कानियो जागरूकता गतिविधियां राखी गई और विद्यार्थियों ने निशुल्क वन भ्रमण करवायो जा रियो है। पाली माए मनरेगा रे तहत काम करी महिला मजूर खातर जागरूकता सत्र राख्यो गयो। इन दौरान वाने काम री ठोड़ और जंगला रे कने काम करती टेम जरूरी सुरक्षा उपायां री जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना ने आज एक बरस पूरो वैग्यो है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय री आ योजना लारला बरस आज ही रे दिन शुरू हुई ही। इनरो लगस आईटीआई ने आधुनिक और उद्योगारी जरूरता रे मुजब तैयार करनो है। योजना रे तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधावा ने बेहतर बनायो जा रियो है। सागे ही मोटियारा ने रोजगार खातर जरूरी व्यवहारिक कौशल देबा माथे जोर दियो जा रियो है। पीएम सेतु योजना खातर कुल 60,000 करोड़ रुपया सो बत्ता रु प्रावधान करियो गयो है। राज्य सरकारी कानून शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवाओं रो तुरंत लाभ मुहैया कराबारा लगत सू सेवा सेतु अभियान 2026 राख्यो जारियो है। अभियान रे तहत जयपुर विकास प्राधिकरण रिकानी सू 7-16 अक्टूबर ताई प्राधिकरण परिसर माए नागरिक सेवा केंद्र माए जोनवार सेवा शिविर राख्या जावेला। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन बताया कि इन अभियान रो उद्देश्य शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवा वा मुहैया करा बारे सागे उनसो जुड़िया मुद्दा रा मौका माथे निस्तारण पक्को करनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह काल नई दिल्ली माए 17वीं पेंशन अदालत री अगुवाई करेला। इन दौरान 80 बरस सो 32 उम्र रा सुपर सीनियर पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगिया री 849 लंबा टेम री शिकायत रो हल काड़ियो जावेला। डॉक्टर सिंह इन बरस 13 महीने राखी 16वीं पेंशन अदालत री सफलता री गाथावा ने उजागर करबा वाला छोटा पोस्टर जारी करेला। इन मौके पारिवारिक पेंशन भोगिया सू जुड़िया मुद्दा माथे अक्सर पूछा जाबा वाला सवाल और उत्तर वाली किताब रो विमोचन भी करियो जावेला। मंत्रालय बतायो के 2017 में शुरू होबा रे पाछे हाल ताई आयोजित 16 पेंशन अदालत माए कुल 28,797 शिकायता माए सू 20,676 शिकायता रो मौका माथे ही हल काड़ियो गयो है। इन खातर इन भात्रा मामला रा समाधान री सफलता री दर 71.79% रही। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकारी महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इनने खास रूप में माल और सेवा कर जीएसटी रा रूप में लागू करियो गयो है। 1 जुलाई 2017 ने पूरा देश में लागू करिया गया। इन टैक्स रो खास लगस देश भर में फैलिया कई अप्रत्यक्ष करा ने खत्म कर एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनानो है। एक रिपोर्ट।
3: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे। इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: एशियाई खेल 2026 रो जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन वे गयो। इन दौरान खिलाड़ी मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेला रा मेजबान कतर ने सौंपिया गया। समापन समारोह माए निशानेबाजी माए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत पावाली नीरू ढांडा ध्वजवाहक रा रूप माए भारतीय दल री अगुवाई करी। भारत खेला माए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदक समेत 85 पदक सागे अंक तालिका माए चौथी ठोड़ माथे रियो। और अब आखिर माए खास खबरां एक और फेरू। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया देश रा संस्थान एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती सो ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट पार्क रा सम खेतर माए 2 नर गोडावण ने प्राकृतिक आवास माए छोड़िया। देश माए हाल ताई आयोजित 16 पेंशन अदालत माए 20,676 शिकायता रो मौका माथे हल काढ़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन। पदक तालिका माए भारत चौथी ठोड़ मात है रियो। इंड्रेस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 28 पूरे भी हो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुबह 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
1: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: ग्राम भारती कार्यक्रम ने सुनबाला सगला बहना भाइया बुजुर्गा ने रेणु रो राम राम सा, और आपड़े सागे है अश्विनी भाई राम राम सा।
5: बिल्कुल रेणु जी, थाने भी घणो घणो राम राम, और सुनबाला सगला कर सभा ने घनी घनी राम राम।
4: सब जाना हां कि बेजवान जानवर बोल को नहीं पावे अश्विनी भाई, इके अलावा बाने काई तकलीफ हो रही है आपा महसूस कोन पर पावा, वे केवल महसूस कर सके है वे बोल को नहीं पावे, और आपने राजस्थानी संस्कृति माए जीव दया ने सबसे बड़ो मानियो जावे है, गाया ने तो माता को दर्जो भी दियो जावे है, और आपने पंछा ने चुग्गो नागबो अपनी परंपरा रो हिस्सो मानियो जावे है। इके अलावा कहावत भी है, जीव दया ही सबसे बड़ो धर्म है, और अपना राजस्थान री माटी अर ढाणी ढाणी माए पशु पक्षियां सु प्रेम रो अनोखो संदेश दियो गयो है। तो जानो हो अश्विनी भाई, हर साल आपा 4 अक्टूबर ने पूरी दुनिया माए विश्व पशु दिवस मनावा।
5: हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी बात बताया। और देखो थे शुरुआत अगर पशुओं से करे तो आज से 4 अक्टूबर और विश्व पशु दिवस आज के दिन आप बड़ी धूमधाम से मनावा था, और अपना देश में ही कौन है आप पूरा विश्व में मनावा था, और इस दिन को मुख्य उद्देश्य थे बताया कि प्रति प्रेम दया करुणा संवेदनशीलता भावना विकसित करवो, और साथ में बाकी अधिकारों संरक्षण कल्याण के प्रति लोगों ने जागरूक करनो भी चाहिए। यानी पशु प्रकृति का कई प्रकार का अंगामा चाहिए, जहाँ पृथ्वी माले जीवन को एक संतुलन बनाए रखवा में पशु पक्षियों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी गई है। यानी मनुष्य और पशुओं को संबंध अभी को कौन है प्राचीन काल से चलो आ रही है, पशु मानव जीवन कृषि पर्यावरण अर्थव्यवस्था और संस्कृति के महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है हरदमी। इले पशुओं की रक्षा करवो केवल अपनो नैतिक कर्तव्य कौन है, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी गई।
4: जी सही कियो अश्विनी भाई, लेकिन आज भी आपड़े पशु पक्षियों पर बहुत सारो संकट है, आज भी जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप जाना हाँ चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा विकास की दौड़ में चल रहा है, जी के माए आपड़ा जो बेजवान जानवर और पंछी है बड़ा दुखी हो रहा है। जी हाँ मैं बताऊं, आज चारागाह की कमी होती जा रही है, मकाना और कारखाना की वजह से खेती और जो जंगल रो दायरो है वो धीरे धीरे काई होते जा रही हो घटते जा रही हो, जी के जानवर क्या होता है।

0: सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: देखो, इतना बढ़िया गीत सुने आप, सीमा मिश्रा को और संदेश भी सुने, और अब अपना प्रोग्राम ना आगे बढ़ाते हुए सिलसिलों से जानकारी को और जानकारी देवा के लिए आज अपने बीच पधारा है सुशील कुमार शर्मा, जो से वरिष्ठ वैज्ञानिक, जहाँ से आज आप जानकारी ले ला सरसों की बुआई को उचित समय, बुआई की विधि और बीज दर आप कई तरीका से उपचार कर सका था। तो लेवा जानकारी
5: जी, दिलाओ जानकारी।
6: ग्राम भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु नायक का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं। आज हमारी जानकारी का जो विषय है वो है सरसों की बुवाई का उचित समय, बुवाई की विधि, बीज दर, उपचार और जीवाणु खाद। तो सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
7: राम राम किसान भाइयों।
6: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरसों की अच्छी पैदावार अगर हम लेना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि उचित समय कौन सा है। सही समय पर किया गया काम हमें हमेशा अच्छे फल देता है या अच्छे परिणाम उसके निकलते हैं। बात जब खेती किसानी की है और सरसों की फसल की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से समय तक या किस समय तक हम उचित बुआई कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सके?
7: जी बिल्कुल, समयोचित प्रश्न है और विभिन्न क्षेत्रों में इस समय सरसों की खेती के लिए किसान भाइयों ने अपनी तैयारी प्रारंभ भी कर दी है
6: जी।
7: अलग अलग स्थान पर बुआई का जो समय होता है ना, वह तापमान, मानसून समाप्ति कब तक हो रही है, फसल चक्र में उसने कौन सी फसल लगा रखी, आदि विभिन्न बातों के ऊपर निर्भर करती है
6: जी।
7: बुआई में देरी होने से उसका उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी जो है वो होती ही होती है
6: जी।
7: तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की बुआई जो है बिल्कुल उचित समय पर किया जाए। अब इसका उचित समय जो आपने पूछा है और किसान भाई भी जानने को उत्सुक हैं कि उचित समय कौन सा है, तो बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार, क्योंकि हमारे संस्थान की भी और अन्य संस्थानों से या अन्य किसी प्राइवेट उसके भी है, तो उनकी भी किस्में जो निकाली गई हैं वो अगेती अलग होती हैं, मध्यम समय की अलग होती है और पछेती अलग होती है। तो सरसों की जो किस्म है उसके अनुसार सितंबर मध्य से लेकर के अक्टूबर अंत तक का है, अर्थात इस समय से शुरुआत। लेकिन फिर भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतया औसतन 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान किसानों को देना चाहिए। मैं आपको कुछ एरिया का बताऊं कि वहां के लोगों की एक प्रचलित धारणा है कि पहला नवरात्रा और बुधवार टलवाई नद्या, कि पहला नवरात्रा है और बुधवार है तो हम तो सरसों डालेंगे चाहे 35 डिग्री ही तापमान हो और फिर वापस आ गए साहब उड़गी सरसों तो ओजू बीज दो। तो वो स्थिति जो है किसानों के लिए ही नुकसानदायक होता है। आजकल तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों का जो किसान बीज लेते हैं 1100-1200 रुपए किलो तक का बीज उनका लगता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपना आर्थिक नुकसान ना करें। और इससे इन इलाकों में जो सरसों की बुआई यदि किसी कारणवश नवम्बर में की जाए तो देरी से बुआई के लिए भी उपयुक्त किस्में हैं, जैसे CS56, NRC HB 101, RGN 145, RGN 236, RVM 2, PM 26, ये कुछ किस्में हैं जिनको हम नवंबर के अंत तक भी बुआई करके और कुछ पैदावार किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि ये उसी स्थिति में होगी जहां पर कोई, जैसे अगर अरहर की फसल खड़ी है या आपके ग्वार जो है वो लेट से कट रही है, तो उन क्षेत्रों के अंदर आप इस तरीके से इन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं
6: जी। समय की हमने बात कर ली, अब बारी आती है बीज दर की। तो सरसों की बुआई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए?
7: देखो सभी किसान भाई वैसे सामान्यतः आवश्यकता से ज्यादा ही बीज डालते हैं
6: जी।
7: बीज दर बुआई के समय किस्म और मिट्टी की नमी पर तो निर्भर करती ही करती है, फिर भी अगर लाइन से लाइन में बोई गई फसल है तो उसके लिए 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है
6: जी।
7: और

0: जहाँ 4 बीघा में 1 हेक्टेयर होता है, तो आप समझें 1 किलो बीघा का मोस्ट सफिशियंट, उसकी सही मात्रा है, उससे ज़्यादा किसान को नहीं डालना चाहिए। और बारानी, लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र की तुलना में 15 से 20% ज़्यादा मात्रा में बीज उसको डालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है थोड़ी ख़राब होती है, पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। और आवश्यकता से ज़्यादा बीज अगर हम डालते हैं तो देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3,33,000 के करीब पौधे होने चाहिए सरसों के, और ज़्यादा अगर हम डाल देंगे तो क्या कहते हैं ना कि अगर एक प्लेट में जितना भोजन रखा है एक व्यक्ति के लायक है या उसमें 4 व्यक्ति बैठा दिए आपने, तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, सभी को पोषित रह जाएंगे।
1: बड़े काम की बात है। अक्सर हमारा किसान सोचता है कि हम ज्यादा बीज अगर डालेंगे ज्यादा पैदावार होगी, मगर होता उल्टा है ना, क्योंकि हर पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है। तो बीज दर किसान भाइयों आप जितना हमारे विशेषज्ञ बताते हैं उसके अनुसार ही रखें। अब डॉक्टर साहब बारी आती है कि बुवाई किस विधि से करें। बीज का आपने बता दिया कि बीज दर हमें कितनी रखनी चाहिए, मगर बुवाई की कोई खास विधि जिससे कि सीधे हमारे पैदावार पर असर होता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, बीज की बुवाई की विधि, सबसे बढ़िया बात तो जो अभी मैं पहले भी कह रहा था कि लाइन सोइंग जो अगर हम करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी सामान्यतः क्या है कि ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ किसान भाई जुताई किए गए खेत में बीज को बिखेर करके और फिर पाटा लगा देते हैं, लेकिन अनुसंधान से ये पाया भी गया है कि सरसों की बुआई पंक्ति में अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो ही अधिक लाभ मिलता है। सरसों के बीज को हल के साथ लगे हुए जो उसका जो सीड ड्रिल जिसको हम कह सकते हैं, या पोरा या नाई का पोरा जो भी लोकल लैंग्वेज में किसान बोलते हैं, उसके या कोई यांत्रिक सीड ड्रिल हो, इसके द्वारा बोया जाना ही उपयुक्त होता है। और पोरा द्वारा ड्रिल बुआई के बाद पाटा नहीं लगाया जाता है कि अन्यथा बीज क्या होगा, अधिक गहराई में चला जाएगा, और यदि ज़्यादा गहराई में चला गया तो फिर उस बीज से जो है उसका अंकुरण जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है
1: जी।
0: और इसके अंदर अगर जो लाइन सोइंग करते हैं तो इससे बीज की बुआई दर, बुआई की गहराई का भी सही नियंत्रण हो जाता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी में एक समानता रहेगी, निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है। जैसे खरपतवार जो होते हैं अगर 30 सेंटीमीटर की आपने दूरी रखी तो बीच में से हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। यदि पौधे हमने ऐसे ही बेतरतीब लगा दिए हैं तो सरसों में विशेषकर खरपतवारों में, आजकल एक नया खरपतवार जो नया तो खैर क्या काफ़ी समय से है, ओरोबैंकी नाम का एक खरपतवार जो आता है, वो खरपतवार आप उसको भी निकालना आपके लिए बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि ये जो है कि कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो किसान भाइयों को थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में ओरोबैंकी अगर आता है तो उस खेत में सरसों की बुआई ना करके मेथी या फिर अन्य किसी फसल की बुआई करें।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही हम टीकाकरण की पद्धति है उसे अपनाते हैं, तो ठीक ऐसे ही बीजों को जब बोते हैं तो बीजोपचार की जो क्रिया है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और अब आज का जो किसान है जागरूक हो गया है, तकरीबन सभी लोग इस चीज को जानने लगे हैं इस बात को, लेकिन जब बात सरसों की फसल की आती है तो किस तरीके से बीज उपचारित करना चाहिए ताकि शुरू से ही जो है हमारी सरसों की फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। शुरू की अवस्था में अगर रोगों की चपेट में अगर हमारी फसल आ जाती है तो आगे तक हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पूछी भी है, और बीज उपचार के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी पहला जो आपका प्रश्न था कि बुआई की विधि, तो थोड़ा बुआई के समय कुछ सावधानियों का भी मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बुआई के समय मतलब कुछ सावधानियां ऐसी बरतें कि बीज जो सीड ड्रिल द्वारा डाला गया खाद है उसके संपर्क में ना आए। अगर बीज और खाद के दाने आपस में संपर्क में आ जाएंगे तो बीज के अंकुरण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, तो इसके लिए बीज की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें, जबकि खाद को 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर डालना चाहिए, यानी कि खाद जो है बीज से नीचे जाए 3 से 4 अंगुल, 3 अंगुल तो एटलीस्ट वो नीचे जाए ही जाए। उसके बाद में कभी भी खेत में जो पानी जो है वो भरा हुआ नहीं रहे, क्योंकि इसके बीज के जमने और पौधों की बढ़वार पर ये बुरा असर डालता है। अब आपकी हम करते हैं कि टीकाकरण और ये बीज उपचार जो भी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बुआई के लिए साफ, स्वस्थ और रोग मुक्त प्रमाणित बीज का ही काम है ले। आप किसी भी सरकारी संस्थान से या जैसे भरतपुर में जो हमारा सरसों अनुसंधान संस्थान है वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की किस्मों के बीज इस समय वहाँ उपलब्ध भी हैं और किसान भाई जाकर के ले भी सकते हैं। तो प्रमाणिक बीज उपयोग लें सफेद रोली से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर सफेद रोली जहां पर की आती है और किसान भाई बहुत ज्यादा उससे परेशान भी रहते हैं, वहां एप्रोन या SD35 6 ग्राम फफूंदी नाशक प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है
1: जी।
0: साथ ही साथ जो मृदा जनित या भूमि से जो रोग आते हैं उनकी रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा नाम की फफूंद से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको भी हम उपचारित करके और फिर सरसों की बुआई हमें करनी चाहिए। अगर प्रारंभिक अवस्था में चितकबरा कीट या पेंटेड बग, और ये ध्यान रखिएगा कि चितकबरा कीट और पेंटेड बग हमेशा तभी ज़्यादा अटैक करता है जब हमने उचित तापमान से अधिक तापमान की स्थिति में बुआई कर रखी है, ऐसी स्थिति में सरसों को ये तेजी से काट डालता है। तो पेंटेड बग के लिए अगर हमें कंट्रोल करना है तो इमिडाक्लोप्रिड 70 WP 7 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करके और फिर उसकी बुआई करें। तो ये सब अगर प्रक्रिया किसान भाई कर लेते हैं तो निश्चित है कि कीटों से और रोग से प्रारंभिक अवस्था में अपनी सरसों की फसल को बचा पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हम जीवाणु खाद के बारे में बहुत सुनते हैं, तो क्या सरसों के लिए भी कोई उपयोगी जीवाणु खाद है, और यदि है तो हम सरसों की फसल में उसका उपयोग कैसे करें?
0: बिल्कुल, सरसों की फसल के लिए भी है और सभी फसलों के लिए जीवाणु खाद तो होते हैं, तो सरसों की फसल के लिए भी जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता बढ़ानी होती है उसमें दो जीवाणु खाद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: ठीक।
0: एक तो है एजोटोबैक्टर और दूसरा है फास्फोरस घोलक जीवाणु, जिसको सामान्य आम बोलचाल में PSB कल्चर के नाम से किसान भाई अच्छे से पहचानते भी हैं। एजोटोबैक्टर जो जीवाणु खाद होता है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराता है, परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है, और इसके प्रयोग से औसतन एवरेज अगर हम माने तो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा आप मान लीजिए परिवर्तित होकर के पौधों को उपलब्ध होती है। ये 10 से 15 किलो नाइट्रोजन का मतलब सीधे शब्दों में अगर हम समझें, 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अगर आ रही है तो लगभग 35 किलो से ऊपर यूरिया की बचत किसान की उसमें हो जा रही है। साथ ही साथ में जीवाणु बीज के अंकुरण तथा पौधे की बढ़वार में भी सहायक होने के साथ साथ भूमि में जो है अनेकों रोगकारी कवकों की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। इस जीवाणु से मृत कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी जो मृत कोशिकाएं हैं भूमि में वो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती है। ये तो बात हुई एजोटोबैक्टर की खाली। अब अगर फास्फोरस घोलक जीवाणु की बात करें तो फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में जितना भी अघुलनशील फास्फोरस होता है उस अघुलनशील फास्फोरस को तोड़ करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है, और जब उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देगा तो पौधे उसको ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जिससे कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके प्रयोग से औसतन 50% तक फास्फेटिक खाद की बचत की जा सकती है। अब इसको अगर हम मॉनेटरी इनपुट में समझें तो किसान भाई जिस DAP की खातिर परेशान रहते हैं 1500-1800 रुपए तक का पर बैग लेकर के आते हैं, यदि ये 10 से 15 रुपए का PSB कल्चर का पैकेट का उसका ट्रीटमेंट करके उचित मात्रा में अगर लगा करके बुआई करते हैं तो उनका फास्फोरस की आधी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ चौथाई मात्रा भी अगर उसकी बचती है तो भी 400-500 रुपए उनके बचेंगे। तो उसमें तो ज्यादा खर्चा तो कुछ होना नहीं है। और एक जीवाणु खाद से बीजोपचार के लिए जो तरीका है मैं थोड़ा सा एक बार वो भी बता दूं कि प्रत्येक जीवाणु खाद के 50-50 ग्राम के मिश्रण को आवश्यकता के अनुसार पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीजों के में छाया में मिलाएं, उपचारित बीज को 10 मिनट तक छाया में सुखाएं और फिर तुरंत बुआई कर काम मिलें। यदि भूमि उपचार करना है तो 4 किलोग्राम एजोटोबैक्टर और 4 किलोग्राम फास्फोरस घोलक जीवाणु के मिश्रण को 100-125 किलोग्राम पकी हुई या जो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको छाया में समान रूप से मिलाकर अंतिम जुताई से पूर्व खेत में बिखेर कर मिला दें, इसके तुरंत बाद सिंचाई कर। तो ये जीवाणु खाद की इम्पोर्टेंस है जो अपने आप में दिखाती है कि किसानों के लिए कितनी फायदे की चीज है ये।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते रेडियो के माध्यम से कोई संदेश या आपके मन की कोई बात जो आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ या श्रोताओं के साथ साझा करना चाहे?
0: एक नहीं दो करना चाहूंगा
1: जी। स्वागत है आपका।
0: पहली तो ये है किसान भाइयों की, जब भी आप खेत में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें, खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, जांच के आधार पर सिफारिश की गई मात्रा में ही पोषक तत्व फसल को दें, ताकि आपका जो है आर्थिक रूप से भी फायदा

0: और सरसों की बुआई का उचित समय, बुआई की विधि, बीज दर, उपचार और जीवाणु खाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारियां दी, इसके लिए डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: सुने सुनाएं,
2: पीत कांति लाएं,
1: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
2: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
1: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
2: सरसों उपजे शानदार,
1: सरसों खेती का उपचार
2: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
1: खेत पौधे और बीजोपचार,
2: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
1: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
2: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
1: और प्रदेश की खुशहाली का
2: तब होगा सपना साकार।
3: मधु जी इतनी बढ़िया जानकारी दिलाया डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से, तो माखो भी फर्ज बने से कि सुनाओ प्यारो सो लोकगीत
4: सुनाओ सा।

0: और एक गीत के साथ ही ग्राम भारती कार्यक्रम में आज बस इतो ही। एक ही साथ ही अश्विनी कुमार सेन
1: और रेणु ने
0: दो इजाजत और करा
1: राम राम, राम सा।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाएं,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार।
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।

बजकर 30 मिनट हुए हैं। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म रजिया सुल्तान से, आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत खय्याम का और गीतकार जान निसार अख्तर हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के साथ

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: लीजिए अब सुनिए, फिल्म रानी रूपमती में लता मंगेशकर को संगीत एस एन त्रिपाठी का और गीतकार भरत व्यास।

लीजिए आप सुनिए फिल्म राजा जानी में लता मंगेशकर को। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

जब सुनिए पारसमणि फिल्म में लता मंगेशकर और साथियों को, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार फारूक केशर है।

लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म का नाम पाकीजा, संगीतकार गुलाम मोहम्मद है और गीतकार कमल अमराही है।

यह कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मनमौजी, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम में फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो कोरबंद।

0: ए भाई, गोरबन प्रोग्राम सुनने सब बया ने भया ने उठता नैन बैठता नैन चौकिया पर हत्या करता नैन सब ने आप रे लूण की री और सागे
1: ढलियारी और उठना डना
0: राम राम सा
1: भाई।
0: हाँ भाई,
1: हाल तो मैंने तू जावे जने जिम ने तो टन ले जावे
0: जिम ने ले जाओ कोनी तने अगले ले जाना जरूर थोड़ी तन काकी गणे चूर मदी नु पहली कर रखे नी
1: तो पछे मारे भूत ला आ जावे पछे।
0: अरे भूख तो लाग जावे पण तने काके ना आदि ना अब जुकाम लागुड़ो नी तन काकी ये कर केवे के अबार कोई चीकना असर कम खाणो है।
1: सही बात है दियो, सही बात है दियो।
0: हाँ तो तू अबार देख दिनों को दिनों के तू कहीं है ठंड पड़े।
1: सही बात है,
0: रात नहीं चौकी ठंड पड़े और दिन का पड़े तावड़ो। हाँ ये तावड़ो बस हर्द गर्मी हो जाए, लोग खेता में काम करे जन आणु तो पसीनो हुए एर पर रात में जो इतनी ठारी पड़े जो बदल तो मौसम है नी।
1: हाँ
0: ये मैं तेरा बार देख क्यों कौन है अस्पताल आ गए लाइना लगड़े लोग कड़ाई बीमार हो रही है
1: भाई। है टाइम बताऊँ रात है ना टाटा नहीं बूटा रहा है जो।
0: हाँ तावर तब घने लोग आंसर डे काकू तू निक तो राखो कौन है
1: और टाटी के वह ठंडो पानी मत पियो मत पियो तो टाटो मानना तो नहीं ठंडो पानी पी ले वह।
0: ओ ते जलाये लो ठंडो लोटो भर ना।
1: हाँ मैं तो रोटी पीऊँ भाई जब बस मारे डेढ़ बड़ जावे
0: खुद पिए जो को पिए काके ठंडो ते के जलायो
1: और टाटो आटा टा दे नहीं दे मैंने ते ठंडो लिया ते वे
0: नहीं। अबे आपा ने सब नहीं है ना निगराख नहीं पड़ी हो मौसम बदल तो है ना जन खाने पीने को सब ध्यान रखना पड़ी भाई।
1: सही बात है भाई है ना अब तो ना चरणी बीमारी बीमार चले लोड।
0: हाँ पर बीमार चले ना तो दवाई घर नहीं लेनी है। हाँ तो आज जा पर और आप डॉक्टर साहब ने बता चेक करा पची लेनी बोलो भाई रे।
1: सही बात है मैं तो ना सुई टोनला दऊ ला डोलिया मादले ले लूं
0: सुई नहीं लगानी जुन तू हाउ हाउ चेती राख ले तो हुई को लगानी पड़े तेरे।
1: अब मैं लगा ले रात अब से चाहिए ना मैं ओडी से टोनी ना जिन धड़बड़ जा मारे।
0: अरे तू चुपचाप देख बा घंटी बाजे जला दे फोन हो रिया नहीं जिन तेरे हुई दुई अगली लगाऊं ला
1: नहीं बस मने ना चीजे ठुआई ना। हां जरा ओलो ओलो।
0: हेलो।
2: हाँ
0: राम राम सा।
2: राम राम राम राम।
0: कौन बोलो सर किस गेम बोलो
2: ना। मैं दिनेश गांव से कसर है।
0: दिनेश भाई से कसर में कई काम धंधा हुए था के
2: पड़ा
0: कितनी पड़े रे भैया
2: पांच ही में
0: स्कूल रोजिन जावे कभी एबसेंट कौन रहे
2: एबसेंट करने से
0: खेकर नहीं सेक रहे कल तो जरूरी हुए जना।
2: हाँ
0: अब बार खेत में कई काम धंधा हुए थारे
2: खेत में कड़प रोड़ है तिल रोड़ है गवा रोड़ है
0: जन तो हो ही बाकी पड़े बस लियो कहीं रे
2: लियो ही क्या तोड़ लिया
0: बाजरी काट ली
2: ला लिया मूंग बड़ा कर लिया
0: मोट कितना गुया
2: मोट बाल तेरे कुंटल।
0: जन दिनेश भाई एक आड़ी बताई।
2: हाँ पूछो।
0: पक्षी उड़ते आकाश में मगर रहते कहाँ है।
2: नहीं आता
0: तो मेरा छोटा भाई आया डगलिया उससे पूछती हूँ डगलिया।
1: हाँ भाई।
0: अरे वो बीरो है ना दिनेश।
1: हाँ हाँ।
0: इन मैं पूछो जो को सवाल को नहीं तू हताई करी जेर बताई जे आवे की थने
1: बार बता दे। हेलो।
2: हाँ
1: राम राम दिनेश भाई।
2: राम राम राम राम।
1: लूनी भाई पूछो से तो सवाल आवे तो नहीं थी थने। पक्षी है ना आकाश में उड़े से पेड़ पौधा फिर चले में बचे
0: दोना कहीं गलत हो गया
1: गलत हो गया
0: दिनेश भाई कहीं गलत है डगलिया कहीं गलत है दोना कहीं गलत हो गया मैं जीत गई।
1: हाँ तो बताओ उत्तर बताओ
0: दिनेश भाई रे। अरे पक्षी उड़ते आकाश में मगर तो मगर पानी में रहते हैं मगर
1: मधुर मस्त के बारे में बात करो ना।
0: हाँ डगलू भाई पूछ तो दिनेश भाई ने कहीं होने ला
1: भाई सुनाओ टाइम प्रोग्राम में
2: पैदल सुपर डुपर।
3: हाँ जी
0: राम राम सा।
3: राम राम सा। राम राम सा।
0: कौन बोलो सर किस गेम बोलो।
3: मैं बोलू सा लक्ष्मण जाकर जैतान तहसील में कानचा गाँव।
0: बट कई काम धंधा हुए थारे
3: बट तो स्कूल में टावरन पढ़ा वहाँ सा
0: टावरन पढ़ाओ जन मार साहब थे सरकारी हो प्राइवेट हो
3: सरकारी।
0: अरे वासा वासा घर बटी है कि
3: घर तो है देखो नौका तहसील में बेरासर गांव परिवार तो बट रहे।

0: हेलो
1: हेलो
0: राम राम सा
1: राम राम सा
0: आप नाम बताओ और गांव बताओ।
1: नाम दिनेश, गांव जाडली।
0: दिनेश भाई
1: हाँ
0: जाडली में तारे बार काई काम धंधा हुआ खेता में रे?
1: ग्वार उपाड़ी
0: जाओ। मूंग और मोट उपाड़ लिया कहीं रे?
1: मूंग और मोट भाई कोई ना ग्वार ग्वार भाई।
0: बाजरी कौन भाई? तो भाई रे ग्वार में तो कंपी कर दी है की करू पड़े हाथा में की पेरे कहीं?
1: हाँ पेरू ग्लव्स पहन।
0: ग्लव्स पेर ले ठंडे ठंडे उपाड़े। और कौन उपड़ा हुआ तेरे आगे?
1: दादी दादो।
0: अरे वाह वाह पांच में अगला आगे कौन निकले? तू निकले एक दादी निकले
1: छोटी मेरी बहन है डिंपल।
0: अच्छा डिंपल की काम करो है?
1: हाँ पढ़ाई करे बस।
0: ए तू ग्वार उपाड़े तन दादी तन सूर में गाले के?
1: हाँ गाले नहीं।
0: अरे वाह रे वाह। एक आड़ी बताई दे कौन है?
1: हाँ पूछो।
0: तीन पैर का मैं हूँ भाई याद करो जब गर्मी आई कहीं होता है।
1: कौन था?
0: तंठान है जन हमारे बीरवाड़ो डगलियो यूं अतई करूं तने
1: करा दो
0: डगला रे।
2: हाँ भाई।
0: ले दिनेश भाई हूँ बात करी ने आड़ी को अर्थ बताई जे।
2: मैं गड़े चीज चालू की
0: डब डब तू खा पियो पर चकर ली खाउड़ वहाँ से कल्डो एक तो खाउड़ खंडो इतो है।
2: आए दो
0: हमें से आता मकी ली रखे पहली भाई हूँ बात कर ले।
2: हेलो
1: हेलो
2: भाई राम राम बड़े लड्डू
1: राजी रहो खुशी रहो
2: और टाइम हाल चाल है ठंड
1: ठीक है
2: ठीक है तो बच्चे टेपड़े इस तरह ठंडे रहो
1: करूँ नहीं
2: कितनी क्लास में पढ़ते हो?
1: फिफ्टी में पढ़ो।
2: बड़ी श्याम नाली है ध्यान राजो
1: आओ
2: ताने आदि तो और सावे तो नहीं आवे
1: कौन आवे थे बताओ तो
2: भाई पंटो वे हो तुम्हारे
0: पंख होता है।
2: बिल्कुल सही बात है आज टाइम सुनाओ ठंड प्रोग्राम में
1: हनुमान जी भजन सुना दो।
3: लोनी भाई राम राम
0: राम राम राम राम भाई तू कौन बोल रहा है?
3: मनीषा।
0: मनीषा भाई की जगह बोल रहे
3: है? तू जीत बनो भाई बस फटे सुनू।
0: मनीषा भाई अब तू पढ़े तो?
3: हाँ।
0: किसी क्लास में आ गई?
3: मैं दसवीं में।
0: कितना घंटा पढ़े भाई अब कल थार बोर्ड री परीक्षा है ताजो पढ़नो पड़ी?
3: मैं रोज दो घंटा पढ़ू।
0: अरे वाह सा दो घंटा पढ़े परीक्षा नेड़ी आए जन की हल्ली पढ़ी? माँ के आजकल डगलियों की पढ़ाई तो खासा करिया करे है जो तू बात कर देखा डगलू रे।
2: हाँ भाई
0: ले बात करीजिए भाई
2: मैंने चीजें तो आई ना पीछे
0: घनी घनी।
2: हेलो
3: हेलो डगलू भाई राम राम
2: राम राम भाई पटेल लड्डू
3: करो
2: लोनी भाई मैंने ना चीजें ठुआवे हाल है।
3: हाँ सही है
2: माँ लाड रहते हो?
3: हाँ
2: मैंने ये सवाल बताऊं थे।
3: हाँ पूछो आज बताऊं।
2: हाँ मिंटी नंद्रे जिम टाइम थे वे
3: केस के वे केस
2: स्पिलिंग बताओ
3: ये टिकेट में बिल्ली
2: बिल्कुल सही है थे तो होशियार हो आज टाइम सुनाओ टाइम प्रोग्राम में
3: आज हनुमान जी भजन।
2: ओ भाई
0: हाँ भाई
2: मैं हनुमान जी के भजन सुननी चाहूँ।

0: राम राम राम राम लोनी भाई।
1: राम राम सर, राम राम सर, आप नाम बताओ और गांव बताओ।
0: गांव रजलाने राजू बेड़ा बोल लो लोनी भाई।
1: आ बेड़ा जी, गणान गणा राम राम, और किकर गई हो?
0: ओ ठीक आसपा, आज मान आकाशवाणी नागौर चिन्मी चैनल 3500 जन्मदिन है। इरवास आकाशवाणी नागौर पूरी टीम और श्रोता ने घनी घनी हार्दिक शुभकामना।
1: घणों घणों धन्यवाद आपने श्रोतावां ताई पूगी आपरी शुभकामनावां और टीम की तरफ आपने भी घणी घणी शुभकामनावां और धन्यवाद।
0: हां माननीय साहब, आकाशवाणी नागौर प्रसारित होनाला हेलो गोरबान, हेलो फरमाइश, किसान वाणी, युवाणी, महिला दुर्गा पणियारी, ये कार्यक्रम माने घना अच्छा लागे।
1: बढ़िया साहब, बढ़िया, धन्यवाद। आप देखो आपारी आप जकी अटेरी बोली है ना, आप बोली मीठी है जो इर कारण आपने अपनी भाषा मीठी लागे सा।
0: लागे सा माइड भाषा रे कार्यक्रम माने घना बढ़िया लागे और आकाशवाणी अधिकारी ओई निवेदन करा के कोई नया और प्रोग्राम हरू करो तो मां श्रोता ने बड़े माने मनोरंजन ज्ञान वर्धन सब मानो बड़े।
1: जरूर सा, आपकी बात पुगावा बार कई काम धंधा चाले था के खेता में?
0: खेता में बार पूरा बांधा लोनी भाई।
1: बढ़िया सा बढ़िया, मार हाग ढगलू आवड़ो आई हूँ, थोड़ी अतई करी जो
0: करा दो। ढगला भाई
1: ढगला भाई ले अतई कर ले बीरू।
2: आई दो हेलो।
0: राम राम राम राम ढगला भाई।
2: राम राम पटेल आडू राजू भाई।
0: देवतारो थानी लंबी उम्र है वो।
2: मैंने ये सवाल बताओ
0: पूछो
2: माता आकाशवाणी का बर्थडे तिथि तारीख और तब यो बताओ मन जल्दी।
0: 4 अक्टूबर।
2: बिल्कुल सही है, होशियार हो, थाने में टेट छुआउ
0: कहाँ खवाई जो और माँ थाने प्रोग्राम ना देवा आकाशवाणी टीम ने था मानेड़ा मीठा मीठा प्रोग्राम होना हो इरो आस
2: ओ था तो प्यार हो माट वास्ते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सा,
2: तो आज तय सुनाओ थाने ये मोटा पर।
0: हाँ रामलाल जी सुतार भजन सुना दो
2: भाई।
3: हाँ लोनी भाई।
1: राम राम सर।
3: राम राम सर, राम राम सर।
1: आप नाम बताओ सर, गांव बताओ।
3: नाम विकाराम जी बदवासी।
1: विकाराम जी बदवासी का नहीं, कहीं काम धंधा चले हो?
3: खेती रा काम चले भाई जी।
1: खेती में अब कहीं बाकी रखियो?
3: ए ओ गवार है थोड़ो लीलो कर राखुड़ो है, फणिया राम फणिया रो हाथ करान जीमा।
1: अच्छा फणिया तो बावड़ो है के हाउ तो बावड़ो है?
3: बावड़ो तो के दादा खातर है पर फणिया रो के ओड़ो के घर के फणिया तोड़ा हाथ करान थान जीमा।
1: तो ये सब गवार तुम्हारे करे कौन? बाजरी मूंग मोट रहे तो कदी आ गया टेम हुई
3: है? तो टेम हुई पार गया।
1: तो ये आलो काम तो लगभग कोई कड़ भी रही है और मूंग रिमोट तो हो गया निर्वाला।
3: हाँ बे निर्वाल हो गया।
1: एक आडी पूछू थाने?
3: पूछो।
1: सूरज की रोशनी जिधर जाती है उधर मैं मुड़ जाता हूँ, बताओ मैं कौन क्या होता हूँ?
3: सूरजमुखी।
1: हाँ थोड़ी ढगले भाई बात करी जो।
3: हाँ करो भाई जी।
1: ढगला रे।
2: हाँ भाई।
1: ले भाई जी बात कर ले।
2: मैं फड़िया ठावने जाऊँ।
1: अरे डब तू आता में तो तेरे कितनी टोपिया चॉकलेट लेवड़ी आज खाऊ कितो मिलियो तेने।
2: हेलो।
3: अरे डगलू भाई राम राम।
2: राम राम पटेल आदू जी जी।
3: हाँ राम जी निरोगा राखे ताने लंबी उम्र करे गुवार फड़िया जीवन आओ मारे।
2: मैं तो आओ अबा तो अबा आओ मने आवड़े टोली थामी ना।
3: आवड़े कौन दिन आओ थे का हूँ? हाँ मैं आऊँ।
2: नहीं नहीं मैं आ जाऊँ, मैं जानू बटवासी तो रस्तो
3: जानो दिन आ जाओ।
2: हाँ माता आज है ना आकाशवाणी तो जन्मदिन है वो।
3: शुभकामना,
2: बहुत बहुत धन्यवाद
3: थाने पूरे आकाशवाणी ने
2: मन चोटलेट आ रही जो बचे
3: घनी लाडू चोकलेट फूल दिराऊ थे आओ तो घरी एक दिन का हूँ। हाँ मैं आ जाऊँ।
1: भाई ढगला रे।
2: हाँ भाई।
1: बीरे ने पूछ आज कहीं होने ला
2: भाई? ओ भाई हाँ टाइम सुना
3: भजन सुना
2: तिशा
3: रामलाल जी सुतार को गौड़ो
2: अबार सुनो अबार सुनो।

0: हेलो।
1: राम राम सर।
0: राम राम सर। राम राम सर।
1: कौन बोलो सर, किस गेहूँ बोलो?
0: जगदीश बोलो, जोगल सर से।
1: जगदीश भाई, और जोगल सर किस जिला में आवे?
0: चूरू जिला में तो पड़ा।
1: चूरू का निधान अब का जमानो केड़ो के हो?
0: मोड़ो या
1: की जिमन नालो तू यो खेता में
0: आज भी घनी हुई।
1: अरे घनी हुई जन भया के नीर ने कुत्र उगी, अपन जिमन ने बाजरी उगी। और कहीं चाहिए बताओ?
0: हाँ दोनों भाई काको को था।
1: अरे काकर अब आप देखो है ना, चाले ने अठारी पड़े ने रात का।
0: हाँ
1: यूं काको तो जरूर उगी अरवा।
0: हाँ
1: हर घर में उगी। एक आड़ी बता दो कहीं हो?
0: हाँ पूछो आए जन बताओ।
1: एक सब्जी को उल्टा लिखने पर लड़की का नाम आता है तो क्या हुआ? कौन सी सब्जी होती है बताओ?
0: तो कौन ना दो
1: देख लेते नावे कहीं रे।
2: नहीं भाई मुनि टोनिया मैं तो सब्जी खाऊ बार लोटी से लदार लदार
1: रोटी लगाए कह रहे। पहले सब्जी को नाम बता।
2: मन तो आवे टोनी भाई है।
1: कौन आवे?
2: ठीक बताओ।
1: ए वो वे खीरा।
2: खीरा
1: उल्टा करो क्या होगा?
2: राखी। सही बात है।
1: ले बीरो बात कर ले।
2: अबाटरू। हेलो
0: हेलो
2: भाई पटेल लाडू
0: खुश रहो।
2: टाइम कर रिया हो बार
0: मैं कर दिया पढ़ाई कर दिया।
2: पढ़ाई तो थे होशियार हो तिथि में पढ़ो बताओ। मैंने
0: नवी क्लास।
2: हाँ जब बताओ नवी में पढ़ो बताओ। मीन था ना टाइम थे अंग्रेजी में?
0: हाँ
2: मीन तो वही मीन तो पानी में रहो तो
0: मेंड को।
2: हाँ मीन अंग्रेजी में टाइम थे बताओ।
0: अंग्रेजी
2: दुनिया बताओ।
1: अरे तो तू बता दे कि नहीं भाई क्यों लारो लिए रे?
2: अब आप बताओ बार बताओ। FROG फ्रॉड फ्रॉड मिस मीन था।
1: अपूस भाई ने कहीं उड़े ला
2: भैया।
0: हाँ
2: टाइम सुनाओ डान प्रोग्राम में
0: भजन
2: भाई। तो बटन आदमी है भजन सुननी चाहे
1: जावे।

0: हेलो, राम राम सा।
1: राम राम सा, राम राम सा।
0: आप नाम गाँव बताओ।
1: नाम क्रेजड़ा, 399 डिस्ट्रिक्ट चूरू। नाम उमाना राम।
0: उमाना राम जी, क्रेजड़ा में कई काम करो बारो।
1: काम करा, खेती बाड़ी को करा। गुआर बाग नाम है।
0: गुआर कितना बढ़ रहे हो?
1: गुआर घणी जोर को है।
0: कितना बीघा में हो?
1: बस ये बीघा में है।
0: बढ़िया चो की लगी?
1: हाँ, जोर की लगी।
0: बढ़िया सा, बढ़िया। मैं हुई हो तो?
1: हाँ, मैं लास्ट टाइम हुई हो। पहले तो कौन हो? लास्ट टाइम बाहर हुई हो, 15 दिन पहले।
0: हाँ, वो लास्ट वालों में गुआर वालों के कार करियो चोको।
1: हाँ, चोको कार करियो।
0: एक दो कोई दुआ हुआ को नहीं हो?
1: दो तब की ना मानता हुई
0: अभी नहीं ढगले तो ना आवे कहीं रे।
2: आवे भाई, आवे
0: ढगला रे।
2: हाँ भाई।
0: भाई ना तो आवे कौन? तू कोई दो हुना दे के नहीं रे?
2: हाँ मैं सुनाऊं, डुरू डोविन डोन ठड़े टाटे लाडू पाए।
0: अच्छा।
2: भाई यारी डुरू आपने डोविन दियो बताए।
0: अरे वाह रे वाह, भाई जी बात कर देगा।
2: हेलो।
1: हाँ भाई जी।
2: राम राम पटो लाडू सा।
1: राम राम जी। राम राम। राम राम
2: भाई, हाल चाल है टांटा?
1: हाल चाल बढ़िया एकदम।
2: आ थाते जिम में हुए तो नहीं? मैंने बुलाया था रूम थोड़ा।
1: जिम में अब क्या हो? सीजन बुला जरा दावे करे जिम गया कटे
2: पट्टी बात है ना? बुलाओ ना।
1: पक्के आपके बुला? आपके बुला।
2: हाँ जेड़ा बैठो, आज टाइम टाइम सुनावा।
1: रात पे फिर चाल रहे बार तो चलो भजन सुनाए। 500 मिनट बोलना
2: भाई। ए भजन सुननी चाहे
0: जावे।

0: हाँ तो भाई डगला वो तो हमारी सबरी पसंद रो प्रोग्राम है।
1: हेलो डोर बैन।
0: अरे प्रोग्राम है जे कोई भाई है बहन है दादा है काका है बात करनी चाहे फोन करना चाहे अरे हतई करनी चाहे गीत है बजने होना चाहे तो कहीं करना चाहिए
1: डगलियान बहुत डन्नू है।
0: डगलिया का न्यारे नंबर किस है भाई?
1: ए ठंठड़ा नंबर मारा नंबर एक ही बात है।
0: अरे नागौर आकाशवाणी का नंबर बता।
1: हाँ सही बात है सुन लीजिए भैया मैं थाने ते हूँ बचे थे रोला टरोला गीत बात है दिन 12 बजे हूँ 8 बजे थी माने फोन टनू है रेडियो स्टेशन पर नंबर लेना 015-82-240-168
0: पाँचो कितना बजे उड़ना
1: पाँचो रात 8 बजे हूँ लगा 8:45
0: है। सही है भाई। अरे भाई कई भैया का फोन आया जो आप ले नहीं सीखे हमारा नाम लिखे तू।
1: हाँ लिखे तू
0: भाँच भाँच बेटा
1: लोटा चोट ना दो आये मनचेराम जी ब्यास देवेंद्र ब्यास और बेटो परिवार वाला तो
0: अच्छा
1: जाहिलू अनिल भारती और अमन तो सुरना की बड़ी पोल नादोर हूँ जयसिंह ललवाणी और बेटे परिवार वाला तो जेरवाड़ी हूँ राजू देवी शर्मा तो और रजलानी वायो बीरमा राम तो आया।
2: इस कार्यक्रम में लूनकी की भूमिका में थी बीकी कुमारी चौधरी और ढगलिया की भूमिका में थे संजय पाराशर।
0: अब ये बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोगी को
1: आज प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग दो अपने पति जी वर्मा तो
0: सही है
1: और प्रस्तुत टाटा अशोक कुमार जी डोयल।
0: अब संदेश लगा भाई
1: अबा लडू स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो डोरमैन
0: तो अब आप लोन किनेर आगे
1: पहले ने डिरो सीट टटे हैं
0: राम राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो कोरबंद। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर बाद हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ 4थे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 लाख मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
4: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
6: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
7: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
6: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
8: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
6: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य

0: अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। पेश कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए नुसरत फतेह अली खान की गाई कुछ गजलें। यह कार्यक्रम की पहली पेशकश।

हश्र में कौन गवाही मेरी देगा सागर, सब तुम्हारे ही तरफदार।

हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो।

अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान को, कार्यक्रम था सुगम संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बर

0: खुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

0: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।
1: ओ हो हो हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान।

0: शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिले उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।
1: नैना लगे रे जाने क्या हो अब आगे रे।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग। बचपन

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागी।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएमएंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदर मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांगझू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल।

0: पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे। 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांगझू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांगझू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीवी इवेंट में अपने पिछले 3 गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रहीं। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: मोना, 20वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें, 11वें, 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि 5वां, 6ठा स्थान शायद रह जाएगा, लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को

0: पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा। लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
1: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
0: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहां निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके 5वां स्थान हासिल किया, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा। और कंपाउंड आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला, तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने 2 गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरुका, मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी, और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, 2 सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। 2 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहाँ से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, 2 मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, 3 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर 3 गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खासतौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की 2 टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रहे हैं, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी, और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार 1 ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने 2 पदक भारत की झोली में डाले, और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो 1 गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें, वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी 2 प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर, लगातार जिनका दबदबा रहा है, वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विद्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया है, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में।
0: देखिए आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहां से देखने को मिलेगा। और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में 4th स्थान हासिल किया था और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
1: उन्होंने स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
0: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं। खासतौर पे अनाहत सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही है। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
1: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि इन खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
0: देखिए हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
1: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
0: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा, तो यहां बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: मोना स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का यह आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रासरूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएमएन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:20 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 50 मिनट पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।